0: आप सुन रहे हो रेडियो मन भावन 90.8 FM, always heart touching. आप लखानदेश, आप ली मानसर.
1: नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो. दोस्तों, कबीर साहब की एक खूबी है कि वे कभी भी सत्य को छुपाकर या धीमे स्वर में नहीं कहते. वे भरे बाजार में खड़े होकर सबको सुनाकर अपनी बात कहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि समय की रेत हाथ से फिसल रही है. आज कबीर साहब की ओर से आप सबके लिए एक सीधा संदेश है, सत्य को थामने का. कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, राम कहा भला होएगा नहीं तर भला न होए. कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई.

श्रोताओं, इस दोहे की पहली पंक्ति में कबीर एक साक्षी की तरह खड़े हैं। वह कहते हैं, कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, यानी मैं तो निरंतर पुकार रहा हूँ और मेरी बात सबके कानों तक पहुँच भी रही है। लेकिन सिर्फ कानों से सुनना काफ़ी नहीं है, उनका सीधा संदेश है, राम कहा भला होएगा। यहाँ राम का अर्थ उस घट घट वासी चेतना से है, उस परम सत्य से है। यदि उस सत्य को याद रखोगे, उसका सुमिरन करोगे, तो ही जीवन का वास्तविक कल्याण होगा। लेकिन इसके बाद कबीर एक बड़ी चेतावनी देते हैं, नहीं तर भला ना होए। यहाँ नहीं तर का सीधा मतलब है वरना या नहीं तो। कबीर साफ कह रहे हैं कि अगर तुमने इस बात को अनसुना कर दिया, अगर उस राम तत्व को नहीं पहचाना, तो फिर तुम्हारा भला किसी और तरीके से नहीं हो सकता।

0: संखार, विज्ञान, नामरूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाती आणि जरामरण आहे अशी. दुःख जाणवते आपल्याला कारण जन्म, इच्छा, मोह, आसक्ती, वेदना, स्पर्श, सहा इंद्रिय, नामरूप चेतना, अगोदरचे कर्म आणि ज्ञानाचा अभाव या सगळ्यांची अनेकांशी असते संलग्नता. म्हणून असला पाहिजे ज्ञानाचा प्रभाव अविद्येला समाप्त करण्यासाठी. ज्ञानाचा प्रवास रहावा सतत सुरू. तू म्हणालास सबंद सृष्टीचे हे ज्ञान मुक्त करण्यास आहे सहाय्यभूत. म्हणून प्रत्युत्त समुत्पादाचा सिद्धांत, कार्यकारण भावाचा सिद्धांत, चार आर्य सत्यांशी तपासून समजून घ्यावा आणि आर्य अष्टांगिक मार्गाने प्रवास करावा, म्हणजे तुम्ही ज्ञानाने प्रकाशमान व्हाल आणि सुखी राहा.
1: हाय, मी आर्जस्वरा. आपण ट्यून केलंय रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग.
2: श्रोतेहो नमस्कार. आजीबाईचा बटवा या कार्यक्रमात आज आपण जाणून घेणार आहोत जाडी किंवा स्थौल्य, ज्याला म्हणतो आपण वजन वाढणे, याविषयी. शरीरातील मेद धातूचे प्रमाण वाढल्याने शरीर जाड होत जाते, यास आपण व्यवहारात जाडी वाढणे, स्थूलता किंवा स्थौल्य असे म्हणतो. श्रोतेहो या आजारात त्वचेखाली मेद धातूची वाढ होते. याची कारणे आहेत सतत पचनास जड, थंड किंवा तेल, तूप, मिठाई, बादाम, शेंगदाणे यासारखे स्निग्ध पदार्थ खाणे, व्यायाम न करणे, जेवणानंतर त्वरित झोपणे, वातानुकूलित वातावरणात राहणे किंवा शौचास साफ न होणे, फार सुखात राहणे, कोणत्याही प्रकारची चिंता न करणे इत्यादी, तसेच अनुवंशिकता, शरीरातील अंतःस्रावी ग्रंथीतील स्राव कमी होणे, ही स्थूलता आणि स्थौल्य वाढण्याची काही कारणे आहेत. याची लक्षणे: पोट वाढते, आळस येतो, थोड्या श्रमानेही दमायला होते, जिनेवर चढताना दम लागतो, फार भूक लागते, फार तहान लागते, अतिशय घाम येतो, शरीराची दुर्गंधी येते, इत्यादी काही स्थौल्य व्याधीची सामान्य लक्षणे आहेत. स्थौल्यावर योग्य वेळी उपाय करणे आवश्यक असते. स्थौल्यामुळे आयुष्य कमी होते, म्हातारपण लवकर येते, अल्पश्रमानेही घाम येतो, भूक आणि तहान फारच लागते, तसेच यामुळे हृदयरोग, त्वचारोग, मधुमेह, रक्तदाब, दमा इत्यादी रोग होण्याची जास्त शक्यता असते. याचे उपाय: स्थौल्याची कारणे शोधून ती सुरुवातीला दूर करणे, त्यानंतर एखाद्या रोगाचा परिणाम म्हणून स्थौल्य आले असेल तर त्या रोगावर उपाय करणे, वारंवार गरम पाणी प्यावे, याचा अर्थ गरम करून थंड केलेले नव्हे तर 2 कप पाणी घेऊन ते उकळून 1 ते 1.5 कप उरले आणि पाणी गरम गरमच असताना पिणे, ग्लासभर पाण्यात 2 चमचे मध घालून चांगला ढवळून ते पाणी अनुशापोटी घ्यावे, असे दिवसातून 2 ते 3 वेळा केल्याने बराच फरक जाणवतो. उपवास करावा, फक्त फळांचे रसच घ्यावे. श्रोतेहो यानंतर फार भूक लागत असेल तर लाह्या, कुरमुरे, चणे हे खावे. चंद्रप्रभावटीच्या ज्या गोळ्या आहेत 2-2 किंवा 3-3 गोळ्या दिवसातून 2 ते 3 वेळा घ्याव्या. त्रिफळा गुगुळ, मिदोहर गुगुळ किंवा गोक्षुरादी गुगुळ ही जी औषधे आहे त्याच्या 3-3 गोळ्या दिवसातून 3 ते 4 वेळा घेतल्या तरी हरकत नाही. त्यानंतर आरोग्यवर्धिनीच्या ज्या गोळ्या आहेत 2-2 दिवसातून 3 वेळा घेतल्यानेही आपल्याला फरक जाणवून येतो. श्रोतेहो ज्वारी, बाजरी, वरी, नाचणी, मूग, लोणी काढलेले ताक, लाह्या, कुरमुरे, दूध इत्यादींचा समावेश आपल्या आहारामध्ये असायला हवा. लोणी, तूप, तेल, सर्व प्रकारची मिठाई शक्यतोवर खाणे टाळावेच. काही लवकर उठणे, व्यायाम करणे आणि जेवणापूर्वी पाणी पिणे शक्यतोवर करणे आवश्यक आहे. सुखासीन आयुष्य जेवणानंतर पाणी पिणे शक्यतोवर टाळावे. सकस आहाराबरोबरच आपल्याला व्यायामाचीही आवश्यकता आहे. दैनंदिन जीवनात या धावपळीमुळे आपल्याला व्यायाम करायला वेळच मिळत नाही, पण हे सर्व बाजूला ठेवून आपण दर दिवसाला 15 मिनिटे जरी व्यायाम केला ना तरी नक्कीच आपल्याला या आजारात फायदा मिळेल.
3: नमस्कार, ओम शांति। संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज माउली, उनका पसायदान, उसके ऊपर हम चिंतन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और यह पसायदान की दूसरी पंक्ति लाइन या ओवी, जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवांचे, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे पिछले एपिसोड में। तो जे खळांची व्यंकटी सांडो, इसके ऊपर भी हमने चर्चा की। खल मीन्स क्या है? दुष्ट या बुराई, और बुरा आदमी, बुरा आदमी या बुरी व्यक्ति, उसके अंदर की बुराई निकल गई तो क्या होगा, इसके ऊपर भी हमने चर्चा की। तो यहां माउली कहते हैं कि जे खड़ांची व्यंकटी सांडो मीन्स जो बुराई है, टेढ़ा है, टेढ़ेपना जो है, व्यंकटी मीन्स टेढ़ापन, जो मन में टेढ़ापन है, सीधा सरल होता है तो कितना अच्छा लगता है। तो ये टेढ़ापन निकलने के बाद क्या भरना है, इसके बारे में माउली ने कहा है। तया सत्कर्मी रति वाढ़ो, सत्कर्म क्या है उसके बारे में भी हमने चिंतन किया, लेकिन मुझे इस समय ऐसे लगता है कि तया सत्कर्मी रति वाढ़ो, रति मीन्स इंटरेस्ट, रत होना, रममाण होना, खुशी से होना चाहिए। सत्कर्म जो है, सत्कर्म जो है वो अच्छा कर्म, हर कोई चाहता है कि मैं अच्छा कर्म करूं, कोई खुशी से नहीं करता बुरा कर्म। बुरा कर्म कभी कभी प्रसंगवश हो जाता है, कभी कभी संस्कार के वश हो जाता है, और कभी कभी विकारों के वश हो जाता है। लेकिन दिल से अगर किसी को पूछे तो हर कोई अच्छा कर्म करने की इच्छा रखता है, लेकिन वो होता नहीं है। और जब दुष्कर्म होता है तो उनको, मुझे नहीं लगता, बहुत खुशी होती होगी। मन में कहीं ना कहीं कॉन्शियसली, वो बोलते हैं ना, मन खाता रहता है, मन में कहीं ना कहीं खिटपिट रहती ही है अंदर। तो सत्कर्मी रति वाढ़ो मीन्स खुशी से हमें भगवान की भक्ति या भगवान को याद करना या भगवान से संवाद करना, डायलॉग, ये खुशी से होना चाहिए। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम भगवान के पास जाते हैं या भक्ति करते हैं या पूजा करते हैं या नमस्कार करते हैं, वो डर के मारे करते हैं। इसलिए देखिए कैसे इंग्लिश में कहावतें भी कैसे हैं। अगर हम किसी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, तो हम क्या कहते हैं दूसरों को, यस आई एम गॉड फियरिंग पर्सन, गॉड फियरिंग, भगवान से डरने वाला, हमें डर लगता है भगवान से। और फिर अगर हम भगवान की पूजा डर के मारे करते हैं तो इज इट गुड? आप सोचो, आप पिता हो या माता हो और आपके बच्चे हैं, और ये बच्चे आपको प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन डर से, कहीं आप उनको बिगाड़ ना दो, कहीं आप उनको पनिश ना करो, इसी डर के मारे अगर वो प्यार करेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन ये हम सोचते नहीं है, और इसलिए कहते हैं आई एम ए गॉड फियरिंग पर्सन। आजकल ये भी बहुत चलता है, आप व्हाट्सएप पे देखो, फेसबुक पे देखो, क्या होता है, कंपल्सिव मैसेजेस। आप ये मैसेज 100 लोगों को भेज दो, 50 लोगों को भेज दो, 25 लोगों को भेज दो, 10 लोगों को भेज दो, तो ये आपको फायदा हो जाएगा। अगर नहीं भेजोगे तो डैश डैश डैश क्या हो गया। हर कोई मन में जानता है कि ये ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं डर रहता है कि कहीं गलती से ऐसा सचमुच ना हो, तो उससे क्या करे, भेज दो लोगों को, भेज दो, दो तीन ग्रुप बनाओ, लोगों को भेज दो, और फिर हर वही आदमी फिर दूसरा करता है, तीसरा करता है, तो ये डर फैल जाता है। हमारा उद्देश्य डर फैलाना नहीं है, हमारा उद्देश्य जो है वो सुख फैलाना है, आनंद फैलाना है, शांति फैलाना है। और ये सत्कर्म में रति वाड़ो, ज्ञानदेव ने, माउली ने जो कहा है, सत्कर्म में रति होनी चाहिए, रत होना चाहिए, मेरा मन उसमें रत होना चाहिए, मुझे खुशी होनी चाहिए। ये खुशी भगवान को जब हम सही मायने जानते हैं, सही तरीके से जानते हैं, तब होगी। सिर्फ डर रहेगा तो खुशी नहीं होगी। हम करेंगे जरूर, पूजा करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, भगवान को नहलाएंगे, उनको भोग चढ़ाएंगे, सब करेंगे, लेकिन प्यार कम और डर ज्यादा, उससे कुछ फायदा होगा? अपने आप सोचिए, कंपेयर करिए खुद से। अगर कोई डर के मारे आपसे प्यार करता है तो कैसे लगेगा? तो वही चीज अगर भगवान को भी लगती है, कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा। तो ये सत्कर्मी रति वाड़ो, और जैसे सत्कर्म में रत होता है, मन मेरा रत हो जाता है, तो भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवांसे। भूत मीन्स भूत मात्र, ह्यूमन बीइंग, जो जिसके बारे में हमने चर्चा की, बीइंग क्या है, ह्यूमन क्या है, ये भी हमने पिछले एपिसोड में देखा। तो एक दूसरे के तरफ प्यार, हम प्यार का भी बहुत बदनाम कर दिया है, प्यार को हमने बदनाम किया है। प्यार मींस एक ही हम देखते हैं, प्रेम, बॉडी अट्रैक्शन, शारीरिक आकर्षण, नहीं। मां और बेटे का प्यार, पिता और पुत्री का प्यार, इतना पवित्र प्यार है। और वो जो प्यार है, इसलिए हमारे यहां भारतीय संस्कृति में विश्व बंधुत्व गाया जाता है। विश्व बंधुत्व में विश्व बंधुत्व, खाली भारत बंधुत्व नहीं है। हम ये भी कहते हैं, जब शपथ लेते हैं तब कहते हैं, भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे बांधव है, कहते हैं ना बांधव। तो हम एक दूसरे के भाई बहन है, ये रिश्ता है, ये हमने कहीं ना कहीं मान्य किया है, लेकिन खुली दिल से हम मान्य नहीं करते। भाई और बहनों एड्रेस करते हैं सभा में, जब एड्रेस करते हैं तब तो भाई और बहनों कहते हैं, रक्षा बांधते समय भी भाई और बहन कहते हैं, लेकिन खुले दिल से एक्सेप्ट नहीं करते। और इसलिए प्यार जो है वो फैलता नहीं। भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवान से, मैत्री होनी चाहिए। मित्रता जो है उसमें प्यूरिटी है, मित्रता जो है उसमें खुशी है, चाहे वो मित्रता लड़का और लड़की, मेल और फीमेल उनकी भी हो, क्योंकि उनके बहुत अच्छे उदाहरण हमारे यहाँ है, श्री कृष्ण और द्रौपदी। श्री कृष्ण और द्रौपदी, उनका जो नाता था वो सखा और सखी का था, और सखा और सखी का जो नाता है वो बहुत पवित्र है, वो बहन से भी ज्यादा पवित्र है, क्योंकि उसमें कोई अपेक्षा नहीं है। मित्रता जो है, मैत्री जो है, उसमें कोई अपेक्षा नहीं है। जब रिश्ता जुड़ जाता है तब अपेक्षा आ जाती है, क्योंकि बोलते हैं रिश्ते जो है वो बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं, देयर इज नो चॉइस। आपके कोई भी रिश्ते हो वो आपको चॉइस नहीं है, लेकिन मैत्री, मैत्री जो है, मित्र, मैत्र, फ्रेंडशिप, यू हैव गॉट लॉट ऑफ चॉइस। इसलिए फ्रेंडशिप में जो मजा है वो अजीब सा है, बहुत अद्भुत है। तो ये मैत्र जीवन से उसके बारे में मावली ने कहा है, भूताम परस्पर जड़ो मैत्र जीवन से। तो एक बार व्यंकटी निकल गई, फिर से हम रिपीट करते हैं, जे खड़ांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रति वाड़ो। एक बार व्यंकटी, दुष्टता निकल गई और सत्कर्म के प्रति प्यार उत्पन्न हो गया तो क्या होगा? भूताम परस्परे जड़ो मैत्र जीवन से, सारी दुनिया जो है मैत्र, मित्रता आ जाएगी, प्यार आ जाएगा, मधुरता आएगी और रिश्ते बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। और यही तो हमें चाहिए। स्वर्ग का जो रोडमैप माउली ने जो बनाया है, उसमें पहले जो है फर्स्ट पॉइंट है मित्रता, आपस के रिश्ते जो है मधुर होने चाहिए, संबंध मधुर होने चाहिए और यही माउली ने मांगा है पसायदान में। अभी अगला जो श्लोक है, आप अगली जो ओवी है, अगला जो लाइनर है, उसके बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, ओम शांति।
4: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि आपण ट्यून केला आहे रेडिओ मन भावन 90.8 FM ऑलवेज
3: आजच्या। नमस्कार, ओम शांती। मैत्र जीवांचे यहां तक हम आए थे, जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवांचे। ये मैत्र जीवांचे इसमें हम चर्चा कर रहे थे, इसके ये पॉइंट के ऊपर। मैत्र जीवन से जब मैं सुना, जब भी मैं सुनता हूं तब मुझे दो शब्द याद आते हैं। मराठी में कहते हैं जीवलग, जीवलग दोस्त। कैसा है दोस्त? जीवलग में जान से भी प्यारा, जिसके ऊपर जान न्योछावर कर देते हैं ऐसा। या अगर हिंदी में कहते हैं हम तो जिस से जी लग जाता है ऐसा दोस्त। तो ये रोड मैप जो है माउली ने देखा है स्वर्ग के लिए, उसकी जो प्री कंडीशंस है, ऐसे ऐसे होगा तो ये होगा। हर एक में रहता है ना, अगर अच्छा पढ़ाई करोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, वैसे जो प्री कंडीशंस है वैसे ये कंडीशंस है कि पहले क्या करना है, जे खड़ांची व्यंकटी सांडो, बुराई खत्म होनी चाहिए। फिर क्या होगा, अच्छाई आनी चाहिए। जे खड़ांची व्यंकटी सांडो, सिर्फ व्यंकटी सांडो, बुराई खत्म नहीं होनी चाहिए। तया सत्कर्मी रतिवाड़ो, एक दूसरे से प्यार। फिर क्या होगा, जे खड़ांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रतिवाड़ो भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवांचे। तो आपस में प्यार होगा, भाईचारा होगा, कहीं भी लड़ाई नहीं होगी, कहीं भी अनबन नहीं होगी, सब खुशी खुशी हो जाएगा। पिक्चर सामने आता है। देखिए, हर संसार है, संसार में अगर कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, तो क्या होगा, सब खुशी खुशी हो जाएगा। और ऐसे तया सत्कर्मी रतिवाड़ो भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवन से, इस पॉइंट पे दूसरी पंक्ति, दूसरी ओ भी पूरी होती है। सो ये मैत्र जीवन से होने के बाद आगे क्या होगा, दुरितान से तिमिर जावो। नेक्स्ट ओ भी जो है, दुरितान से तिमिर जावो विश्वस्व धर्म सूर्य पाहो जो जे वांछील तो तेला हो प्राणी जात। उसका अगर वर्ड टू वर्ड अर्थ देखेंगे तो ये है कि दुरितान से तिमिर जावो, दुरित दुखी अशांत ऐसे जो लोग है, तिमिर जावो अंधेरा खत्म होना चाहिए। जब अंधेरा खत्म हो जाता है तो विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, सूरज आ जाता है। और फिर जो जे वांछील तो तेला हो प्राणी जात, जो हर कोई व्यक्ति चाहता है उसे वो मिल जाएगा। ये शब्दों का अर्थ हम देखेंगे तो बस इतना ही है, लेकिन अगर उसके डेप्थ में जाएंगे और उससे गहराई तक जाएंगे तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से कुछ अलग ही अर्थ निकल जाता है। और यही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि दुरितान से तिमिर जावो, आजकल क्या होता है, तमो जो है अंधेरा, तमो गुण जो है, तमो गुण भी कहते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमो गुण, तीन गुण जो है उसमें तमो गुण कहते हैं, और अंधेर को भी तम बोलते हैं, तम निशेषा सरला। तमो मीन्स ताप, इसके अर्थ में भी यूज करते हैं या शब्द प्रयोग करते हैं, तम मीन्स ताप। सो तम के तीन अर्थ हो गए, एक ताप हो गया, एक अंधेरा हो गया और एक तमो गुण हो गया। और कलियुग को क्या कहा जाता है, तमो गुण। तमो गुण जब बढ़ जाता है तब कलियुग आ जाता है, ऐसे मान्यता है। और ये मान्यता क्यों है, इसके लिए कोई आईना दिखाने की जरूरत नहीं है, हर कोई समझ सकता है कि यह कलयुग है। कुछ भी अगर खराब चीज होती है तो क्या कहते हैं हम लोग, कलयुग है भाई, कलयुग है। मीन्स हम ये मान्यता है, हमने मान्य किया है कि कलयुग है तो बुरी चीज होगी ही, फिर अच्छी कब होगी? अच्छी चीजें हमने सब स्वर्ग के लिए रिजर्व करके रखी है, और इसलिए कोई भी अच्छी चीज है तो कहते हैं स्वर्ग जैसा है। तो दीज आर ऑल आइडियल्स, और आइडियल्स में जो रहते थे उनको हमने आइडॉल बना दिया। स्वर्ग में जो आइडियल, सब चीजें आइडियल है स्वर्ग में, और वो आइडियल स्टेज में या आइडियल जिंदगी में या आइडियल पीरियड में, जिसे हम सतयुग कहते हैं, गोल्डन एज कहते हैं, और उसमें जो व्यक्ति रहते थे उनको हमने आइडॉल बना दिया। आइडॉल बनाने के बाद हम क्या कहते हैं, वो आइडॉल है, वो आदर्श है, बट वी नेवर थॉट दैट वी शुड ऑल्सो बिकम लाइक दैट। वही फर्क है आइडियल और आइडॉल में। तो हम इसके ऊपर चिंतन कर रहे थे कि तमोगुण, ये तमोगुण जो है वो कलयुग का निदर्शक है, रात का निदर्शक है, और ये रात का निदर्शक जो तमोगुण है वो पूरा होने के बाद क्या होगा, दुरितान से तिमिर जावो, तिमिर मीन्स तिमिर के शब्द के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। ये रात पूरी हो गई तो क्या होगा, दिन आएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये सतयुग जो है वो कब आएगा, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं, कई चर्चा ये होती है कि ये विश्व परिवर्तन होगा, कई बोलते हैं विश्व का विनाश होगा, दिसंबर 2012 बहुत चर्चा हो गई थी, ये विनाश होने वाला है, खत्म होने वाला है, हुआ ही नहीं। और फिर लोग पूछते हैं ये होता है या नहीं होता, या ऐसे ही गप मारते हैं। तो ये रात का अंधेरा जो है वो संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज ने, माउली ने उसी समय देखा, दुरितान से तिमिर जावो, तिमिर खत्म होना चाहिए। और ये तिमिर खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? अगर मैं किसी को कहता हूं कि आज रात को, रात में अंधेरा है, समझो 3 बजे है रात के, और मैं किसी को कहता हूं कि और कुछ 3-4 घंटे के बाद, 3-3.5 घंटे के बाद, अभी तो अंधेरा है लेकिन रोशनी आ जाएगी, मानेंगे नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि सब कुछ मानेंगे, सब लोग मानेंगे, भले रोशनी अमेरिका में देर से आएगी, भारत में पहले आएगी, लेकिन आएगी तो सही। तो ये जो रोशनी है, दुरितान से तिमिर जावो, ये रोशनी कब आएगी? ये रोशनी आएगी जरूर, लेकिन अगर मुझे, मैं भूल गया, मुझे याद है, और मैं मानता क्यों हूं, क्योंकि मुझे याद है, कल भी देखी थी मैंने, परसों भी देखी थी कि 6-6:30 बजे रोशनी आ जाती है, 7 बजे तो सूरज उग जाता है। लेकिन ये मैंने स्मृति में है, मेरे स्मृति में है, इसलिए मैं मानता हूं कि सूरज उग जाएगा, लेकिन सतयुग कब आएगा ये मेरे विस्मृति में चला गया, स्मृति में नहीं है। लेकिन संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज माउली के स्मृति में है, ऐसे मुझे लगता है, इसलिए उन्होंने कहा दुरितान से तिमिर जावो, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहु, जो जे वांछील तोते लाहु प्राणी चाहत। अभी अगले एपिसोड में ये विश्व क्या है, स्वधर्म क्या है, और सूर्य का है क्या है, उसके ऊपर चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, ओम शांति।
5: शिक्षण, माहिती, ज्ञान, मनोरंजनाने सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका। रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हर्ट टचिंग।

0: नमस्कार, स्वागत करते हैं एक बार फिर आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। अभी तक हमने बहुत से एस्पेक्ट्स को जानने की कोशिश की है और सबसे बड़ी बात जो अभी हमने जानी वो ये कि मैं आत्मा हूँ और मेरी आत्मा कहना छोड़कर मैं आत्मा हूँ, ये रियलाइजेशन एक सबसे बड़ी बात है जो इस पूरा जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम समझ रहे हैं। और आज हम मेडिटेशन के ऊपर बात करेंगे। मेडिटेशन एक ऐसा शब्द है जो आज मेरे ख्याल से हर कोई अवेयर है, हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन मेडिटेशन का असली एस्पेक्ट क्या है और क्या मेडिटेशन आसानी से किया जा सकता है, यहाँ कहीं आश्रम में जाके ही हम उसे सीख सकते हैं, कर सकते हैं, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। शिवानी, हम ये तो अच्छी तरह से जो हमने बातचीत की थी कि आत्मा एक एनर्जी है जो यहाँ है और मैं आत्मा हूँ।
1: कैसी आत्मा हूँ?
0: मैं एक शांत, प्यार करने वाली और खुश रहने वाली
1: प्योर आत्मा हूँ,
0: एक वाइट कलर की तरह प्योर आत्मा हूँ। और मेरे साथ
1: यू नो व्हाइल यू आर सेइंग इट सी योर एक्सप्रेशन।
0: ओके,
1: अपने आप के बारे में इस तरह से सोचते हुए भी यू जस्ट फील सो गुड।
0: यस, एक्चुअली यू नो लाइक दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि द मोमेंट वी विल रियलाइज, आई थिंक आई हैड लेफ्ट इट एट दैट, कि जैसे ही मुझे एहसास हो कि मैं इतनी सुंदर हूँ, तो फिर दुनिया कैसी हो, क्या फर्क पड़ता है।
1: नहीं, बट लेकिन तब ये नहीं होता कि कैसी है, तब ये रियलाइज होता है कि हर एक भी तो उतना सुंदर है।
0: बिल्कुल, वो भी उतना ही सुंदर है।
1: द वे आई फील नाइस अबाउट माई सेल्फ, आई विल फील नाइस about the other people also.
0: Of course, yes. And then all the problems will go away. लेकिन उसके लिए पूरे एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आज क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, मुझे सानिध्य मिला तो मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन the moment I'll go out, it'll not be that easy. And again, we've talked about it कि meditation से possible हो पाएगा। पर meditation है क्या? ये एक सबसे बड़ा पहला सवाल ये है। और क्या meditation आसानी से किया जा सकता है? क्या मैं कर सकती हूँ? या it's like, you know, I have to get into something else and then get into meditation.
1: Meditation के बारे में भी कुछ गलत beliefs हैं again. Yeah, meditation is very difficult. Meditation is very complicated. मेरे से नहीं हो सकता है.
0: See, this is what I, you know, everybody has been saying, start meditating.
1: बिल्कुल.
0: And I say, okay, but how?
1: Right. But that वो इसलिए क्योंकि मुझे ये नहीं पता what am I talking about. You know, अगर कोई कहे start exercising, but what exercise, which exercise, how to do it? एक बार वो पता चल गया, then it will not be difficult. लेकिन सिर्फ बोलते रहे कि ये करिए करिए, लेकिन क्या करना है? Meditation comes from the word mediri, which means to heal.
0: Okay.
1: To heal, एक wound है, एक चोट है, उसको heal करना है. या like we discussed last time, to clean.
0: You know? Okay, before you go into the practical aspect and the real aspect of meditation, let's start taking those aspects जिसे अभी तक हम meditation मानते आ रहे हैं, so that it becomes more clear to me also. You know, अभी तक मुझे ये था कि आप जिस भी पूजा की जगह पे आप जाते हैं वहाँ बैठिए, ध्यान लगाइए, ध्यान इज मेडिटेशन, लेकिन ध्यान मैं किसको लगाऊं? एक मूर्ति को, एक उस पावर को, एक एनर्जी को, और क्या करूं? कैसे ध्यान लगाऊं? यू नो, आंख बंद करके क्या करूं? यू नो, लाइक
1: मेडिटेशन को हम योगा भी कहते हैं. हम जैसे हम यहाँ पर जो मेडिटेशन हम करते हैं उसको कहते हैं राज योगा मेडिटेशन. तो योगा कहते ही पहली चीज जो आ जाती है वो है फिजिकल योगा. यू नो, जैसे हम प्राणायाम, हठ योग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो शरीर के लिए है. You cannot mix that with meditation. Meditation is internal. Meditation is to do with the mind. Meditation is to do with the soul. Meditation आत्मा का कार्य है. प्राणायाम, हठ योग, ये शरीर का कार्य है. दो चीजों को हम मिक्स नहीं कर सकते. और इसीलिए मेडिटेशन करने के लिए कोई आसन की जरूरत नहीं है आपको. मतलब ऑफ कोर्स अ राइट पोस्चर होता है, लेकिन हम यहाँ के यहाँ इसी तरह इस सोफे पे बैठे हुए we can do meditation.
0: Meditation has to be silent. Like silently हमें कुछ करना है और हमें क्या मंत्रों का जाप करना है.
1: ये भी एक अलग अलग तरीके है. See, again, there is nothing right, nothing wrong. I will have to try it out and see कि मेरे लिए कौन सी विधि right होती है. जैसे हम मंत्र जाप करते हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि जितनी देर हम मंत्र जाप करते हैं उतनी देर हमारे मन में कोई भी और व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा.
0: अगर मैं एक
1: अब वो हो जाता है जब हम शुरू में करना शुरू करते हैं, एक शब्द को, एक बहुत पवित्र शब्द को लेते हैं और उसका उच्चारण बार बार करते हैं, तो थोड़ा समय तो मन उस पर एकाग्र होता है और उतनी देर कोई और थॉट नहीं आएगा, तो हमारी एनर्जी सेव हो गई, कंजर्व हो गई, नो लीकेज. बेसिकली देर इज नो लीकेज एट दैट टाइम. लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, जब मन को एक आदत पड़ जाती है, वही चीज बोल रहे हैं वही चीज बोल रहे हैं, तो वो वही हो गया कि अगर रोज सेम खाना खाया, आप घर पहुंचे और रोज वही सब्जी बनी है, तो थोड़े दिन के बाद आप उस सब्जी को खाने से थोड़ा सा कतराएंगे और आप सोचेंगे कुछ और खाते हुए घर चलते. इसी तरह मन जब बार बार वही शब्द उच्चारण कर रहा है, तो थोड़े समय के बाद हम बिना उस पर कंसंट्रेट किए उसका उच्चारण कर सकते हैं. इट इज लाइक नए रास्ते पर जाते हैं तो बहुत ध्यान से गाड़ी चलाते हैं, लेकिन जब हर रोज उसी रास्ते पर गाड़ी चलाते हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता. कई बार हम बहुत कुछ और सोचते सोचते लगता है घर पहुंच गए. We were not aware of what was happening.
0: Definitely, ये जो मंत्र उच्चारण की बात या चैंटिंग की
1: बात. Similarly, तो अब आप चैंटिंग कर रहे हैं या मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, आप एक शब्द बोलते जा रहे हैं, साथ साथ मन सोच रहा है आज पता नहीं ऑफिस में क्या होगा, हाँ जी आज पता नहीं खाने में क्या बना है, कल उसने ये कहा था, आज पता नहीं. तो अब क्या हुआ, जर्नी पे चल रहे हैं लेकिन भटक रहे हैं, अवेयरनेस नहीं है किस रास्ते पे जा रहे हैं. तो इसलिए उस मंत्र जाप से जो प्राप्ति होनी चाहिए थी, जो लीकेज को हम प्रिवेंट करने वाले थे, वो नहीं हुआ, लीकेज हो रही है.
0: एक और तरीका जो लोग कहते हैं कि आप आंख बंद करके कंसंट्रेट कीजिए एक लाइट पर और बाकी कोई विचार नहीं आने दीजिए. तो इट्स लाइक आई ट्राइड बट इट वाज नॉट पॉसिबल.
1: क्योंकि बाकी कोई विचार नहीं आने दीजिए, दिस इज मोर और लेस इम्पॉसिबल, यू नो, क्योंकि मन का काम है सोचना. आप उसको दमन नहीं कीजिए, आप उसको रोकने की कोशिश नहीं कीजिए, वो उसका नेचुरल कार्य है. एक स्प्रिंग है, अगर आप उसको दबा देंगे जबरदस्ती, वो दब तो जाएगा लेकिन जैसे ही वो प्रेशर रिलीज होगा, इट विल जस्ट रीबाउंड. तो पानी बह रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसकी धारा को परिवर्तन कर सकते हैं, उसको चैनलाइज कर सकते हैं. तो मेडिटेशन जो हम सीखते हैं, इट इज नॉट स्टॉपिंग द माइंड. और वैसे भी स्टॉप करके फायदा क्या होगा, हमें क्या रिजल्ट चाहिए, हम मेडिटेशन से क्या चाहते हैं. फॉर मी पर्सनली, मुझे मेडिटेशन से क्या चाहिए था, अ ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन अपने आदतों का, ट्रांसफॉर्मेशन अपने संस्कारों का, परिवर्तन अपनी पूरी जीवन शैली का, अपनी वृत्ति का, अपने दृष्टिकोण का. तो वो मन को दबन करने से नहीं होगा,
0: वही अपने रॉन्ग बिलीफ्स का,
1: वो सारा एटीट्यूडनल चेंज चाहिए था मेडिटेशन से. मन को जब हम दबन करते हैं तो कुछ देर के लिए कोई गलत संकल्प नहीं आएगा, लेकिन कोई सही संकल्प भी तो नहीं आया ना,
0: क्योंकि जनरेट ही नहीं.
1: हाँ, तो लीकेज बंद हुई, डिस्चार्ज नहीं हुआ, लेकिन चार्ज कहाँ हुआ. There are two different things. आपने डिस्चार्ज नहीं किया, लेकिन क्या आपने चार्ज किया. तो मेडिटेशन शुड बी कि वर्किंग ऑन योर सेल्फ चार्जिंग प्रोसेस, जिससे कि फिर आप जब सिर्फ वो 10 मिनट मेडिटेशन या 15 मिनट नहीं, आप सारा दिन में कुछ भी कर रहे हैं, वो मेडिटेशन का रिजल्ट आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई देना चाहिए. आप जब बैठकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करते हैं धीरे धीरे, तो वो सिर्फ उस टाइम के लिए नहीं होता है, वो पॉजिटिव प्रोग्रामिंग फिर आपकी सारा दिन वर्क करती है. आप सोल कॉन्शियसनेस जब सुबह बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो सारा दिन आप एक एफर्ट या एक नेचुरली रहेगा कि आप सोल कॉन्शियस स्टेज में रहते हैं. तो मेडिटेशन का रिजल्ट उतनी देर के लिए नहीं होना चाहिए, वो सारा दिन आपके ऊपर आना चाहिए. तो मेडिटेशन राजयोगा, मेडिटेशन राजयोगा अर्थात एक ऐसा योग जिससे हम स्वयं पर राज्य करें.
0: स्वयं मतलब अब कौन
1: सेल्फ से पोत पोत द माइंड इंटेलेक्ट संस्कार एंड द फिजिकल ऑर्गन्स.
0: अनदर थिंग व्हिच इज देयर इज सोल बॉडी एंड माइंड. They should be in sync. ये हम सुनते आए हैं.
1: Right. लेकिन जैसे हमने शेयर किया था कि soul and mind ये दो अलग चीजें नहीं है, दो energies नहीं है. Soul जब सोचने का काम करती है, हम उसको mind कहते हैं. तो मैं आत्मा अपना मालिक जब बन जाता हूँ, that is called राजयोग, स्वयं पर राज्य करना, जिसको हम कहते हैं स्वराज्य, self sovereignty, self rule. तो एक आत्मा एक बैटरी की तरह है, जो बैटरी आज थोड़ी सी डिस्चार्ज्ड है और डिस्चार्ज्ड होने के कारण वो थोड़ा सा तकलीफ दे रही है, कभी गुस्सा कभी चिड़चिड़ापन. अब उस बैटरी की चार्जिंग करनी है. एक है कि हम अपने आप उसको चार्ज करने की कोशिश करें, जो हम ट्राई करते हैं, जैसे आपने कहा कॉन्सेंट्रेट ऑन द सेल्फ. ओके, वी कैन डू इट, बट इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, लिटिल चैलेंजिंग, क्योंकि डिस्चार्ज है ना, तो चार्ज करने में, चार्ज कैसे करेंगे बैटरी को?
0: चार्जर इलेक्ट्रिक सॉकेट में लगा के.
1: चार्जर किससे कनेक्ट हो जाएगा?
0: जो मेन सॉकेट है,
1: पावर सप्लाई.
0: ओके,
1: तो पावर सोर्स से जब तक इस बैटरी को नहीं कनेक्ट किया, तब तक इसकी चार्जिंग, वो क्या होगा, अगर खुद को ही चार्ज करेंगे थोड़ा सा होगी, फिर डिस्चार्ज. जैसे ना गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, अब उस टाइम है नहीं पावर सोर्स, तो हम किसी और बैटरी के साथ थोड़ी देर कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक हो जाता है. फाइनली वी हैव टू गो एंड गेट इट चार्ज्ड. इसी तरह खुद पे थोड़ी सी मेहनत करते हैं या किसी और से बात कर लेते हैं, तो इट्स बैटरी टू बैटरी चार्जिंग, इट वोंट लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग, थोड़े टाइम में अगेन डिस्चार्ज. तो अगर रियली चार्जिंग करनी है, द बैटरी विल हैव टू बी कनेक्टेड टू द पावर सोर्स. तो उसके लिए पहचान चाहिए, परिचय चाहिए बैटरी का भी और पावर सोर्स का भी, कि किससे जोड़ रहे हैं, कौन है वो शक्ति.
0: बैटरी तो वी अंडरस्टूड लाइक इस, यू
1: नो, कि मैं आत्मा हूँ. इसलिए जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो है सेल्फ रियलाइजेशन, जो हमने लिया कि सेल्फ टॉक, सेल्फ काउंसलिंग. लेकिन ये बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है, दिस इज नॉट मेडिटेशन, ये सिर्फ एक फर्स्ट स्टेज है. मेडिटेशन इज अ रिलेशनशिप, अ कम्युनिकेशन, एक संबंध परमात्मा के साथ. हमने बहुत सारे संबंधों की बात की और बहुत सारे संबंधों में उतराव चढ़ाव देखे, लेकिन जो एक संबंध जो बहुत वैल्यूबल है और जिसको आज की भागदौड़ में हम शायद कहीं भूल से गए हैं या खो सा गया है, वो है मुझ आत्मा का उस परमात्मा के साथ संबंध, ये है योग.
0: एंड वो परमात्मा, वो पावर, जिस पावर, फुल पावर की बात कर रहे हैं जिसके साथ हमें अपना सॉकेट जोड़ना है, वो कहाँ है?
1: उसकी पहचान चाहिए, उसका परिचय चाहिए. जैसे हम लोग प्रेयर करते हैं, हम लोग जब सबसे पहले सेंटर पर आए तो हमने कहा हम तो वैसे भी भगवान को याद करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मतलब ये कोई नई बात नहीं है. प्रेयर और मेडिटेशन, इसमें भी थोड़ा सा अंतर है. प्रेयर इज लाइक वन वे कॉन्वर्सेशन,
0: आस्किंग फॉर इट.
1: हाँ, आस्किंग ऑल्सो एंड वन वे. आप देखो, हम जाते हैं मूर्ति के सामने, बहुत आस्था से खड़े होते हैं, हम अपनी बात कहते हैं. You know?
0: Can we hear him?
1: How will a relationship develop otherwise?
0: Can we have a conversation with Paramatma?
1: That's a relationship, na?
0: हाँ.
1: आप देखो, आप और मैं बैठे हैं, सिर्फ मैं ही बोलती जाऊँ, आप बिल्कुल बोले ही ना, तो संबंध कैसे बनेगा? संबंध तो मैं कुछ बोलूं, आप कुछ बोले, मैं कुछ पूछूं, आप कुछ उसका जवाब दे, तब तो एक
0: रिश्ता
1: बनता है. एक बोलता जाए, दूसरे की सुने भी नहीं और दूसरे की राय कुछ भी नहीं करे, तो ये संबंध नहीं है. और प्रेयर में और एक चीज जो थोड़ी सी हो जाती है कि हम अपनी भावना की बात नहीं बोल रहे हैं. यू सी, एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं कि एक छोटा सा बच्चा पहाड़ी पर बैठा था, गैया चरा रहा था, तो बोर हो रहा था, पेड़ के नीचे बैठ गया. तो उसने सोचा मैं भी बोर हो रहा हूँ, भगवान भी ऊपर बैठा होगा, वो भी हम सबको ऐसे ही छोड़ देता है गैया चराने के लिए, जैसे मैंने छोड़ दिया, वो भी बोर हो रहा होगा, क्यों नहीं मैं उससे बातें करता हूँ. तो उसने बातें करनी शुरू की, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, मैं ये हूँ, आप कैसे हो, व्हाटएवर, अ लिटिल बॉय, वो अपनी वार्तालाप कर रहा था. एक पंडित जी वहां से गुजरे, बच्चे क्या कर रहे हो? जी मैं भगवान से बातें कर रहा हूँ. तो उसको डांट दिया, तुम भगवान से ऐसे थोड़ी बातें की जाती हैं. फिर उसको श्लोक सिखाए, रटाए, उसको मुश्किल हो रही थी रटने में, उसको रटाए, कहा यही बोलना, ये भगवान से बात करने का तरीका होता है. तो वो वही बोलने लगा, वही बोलने लगा. रात को, कहानी है ऑब्वियसली, रात को जब पंडित जी अपने घर पहुंचे और भगवान को याद करने बैठे, तो उन्होंने भगवान की आवाज सुनी, पंडित आज क्या किया सुबह? वो छोटा बच्चा कितनी मीठी मीठी अपनी प्यारी प्यारी बातें मेरे साथ कर रहा था, तो तूने क्या करा दिया उसको? अब वो ऐसी बातें कर रहा है जो उसको ना खुद समझ में आ रही है, ना उसके पीछे उसका कोई भाव है. सो दैट कैन नॉट बी अ रिलेशनशिप. यू सी, इफ आई पिक अप अ बुक एंड आई लर्न अप अ फ्यू वर्ड्स एंड मैं वही वर्ड्स आपके सामने सिर्फ बैठ के दोहराती रहूं, इट्स नॉट अ रिलेशनशिप. हम 100 लोग इकट्ठे खड़े होते हैं, प्रार्थना करते हैं. मुझे याद है हम स्कूल में खड़े होके प्रार्थना रोज करते थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें भावना मिसिंग है. हमने सिर्फ उन शब्दों को ही मैकेनिकली बोल दिया और सबके वही शब्द है. सबका वही बोल कैसे हो सकता है? तो मेडिटेशन इज कॉन्वर्सेशन, नॉट सेइंग समथिंग व्हिच आई हैव लर्नड अप.
0: टॉकिंग टू गॉड, talking to God.
1: Yeah, it's in conversation with God. Hmm. Absolutely.
0: But then will He talk back to us?
1: What do you think?
0: I don't know.
1: Is it possible?
0: I don't know. I'm like, if you are saying it, but I don't think so, because I don't know who God is.
1: Atma ka Paramatma se conversation, right? Atma ka Atma se conversation kaise hota hai? Is mukh ke dwara, right? Lekin kabhi kabhi bina mukh ke dwara bhi hamara conversation hota hai.
0: Gestures.
1: Aap ghar baithe, aapko maine phone kar diya. Nahin, gestures ki bhi zarurat nahi hai. Aapko maine phone kiya, aapne kaha, main aapko hi abhi yaad kar rahi thi. Kya? Kaun? Kiska conversation chal raha tha? Telepathy. एक संकल्प यहाँ से क्रिएट हुआ, वो आप तक पहुंचा, आपसे भी संकल्प आया. कई बार हम किसी के पास अपना प्रश्न लेकर जाते हैं, प्रश्न बोलने से पहले ही सामने वाला व्यक्ति उसका आंसर दे रहा होता है. आपको कैसे पता चला ये मेरा क्वेश्चन था? पता नहीं. Why? Because question मुख से नहीं बोला जाता है, पहले वो यहाँ क्रिएट हुआ. और अगर सामने वाला रिसीवर ठीक है, क्लियर है, उसका बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, तो माई एनर्जी इज रीचिंग and you will give me back. Telepathy. Agar atma atma ke beech ye communication thought power pe ho sakta hai, to atma aur paramatma se nahi ho sakta. Farak kya? In fact, it's easier, kyunki yahan to hum sab thode se confused hain aur hamare bahut sara kuch chal raha hai, to wo receiver aur transmitter ki frequency thoda sa match karna kabhi kabhi difficult ho jata hai. But he is clean, he is beautiful, he is waiting for me. All that I have to do is tune my frequency to him.
0: Lekin at one point, lots of people must be tuning their frequency.
1: But that he is the powerhouse. So lot of batteries can get connected at the same time. It's energy, it's not physical. Dekho, ye sab limitations of being with so many people at the same time tab aati hai jab ek physical costume aap use kar rahe hai. Paramatma to ek shakti hai. Wo nirakar hai. वो पावर है, जैसे मैं एक पावर हूँ, वो भी एक पावर है.
0: लेकिन तो उसको ये इतना लाइक इट्स अमेजिंग, बट इट लुक्स सो abstract actually.
1: It's not abstract, it's very simple. Once I get his introduction and I get to know him, without that it's abstract. Absolutely. Agar hum kahein ki haan bhagwan kuch hai, abhi tak kya tha bhagwan, kya tha mere liye, concept tha. God was a belief. इसीलिए अभी तक कहते हैं, do you believe in God? You know, आप कभी नहीं कहेंगे do you believe in your parents? What is there to believe? They are my parents. मतलब उसमें बिलीव क्या करना है? It's the truth. Similarly, there is no such thing as do you believe in God? God is my father. It's the truth. But अभी तक वो truth को नहीं पहचाना, तो अभी तक वो belief में ही चल रहे हैं. Do I believe in God? Which form of God? God क्या है? तो ये सब चीजों की थोड़ी सी पहचान चाहिए, इसका परिचय चाहिए.
0: हमारे पास यू नो लाइक वक्त कम है, तो हम पहली चीज यहीं पे, क्योंकि कहीं प्रोग्राम खत्म हो जाए और हम ये पहुंच ही ना पाए कि कैसे परिचय कैसे मिलेगा परमात्मा.
1: इसी के लिए जो हम राजयोगा फाउंडेशन कोर्स हर सेंटर पे, आज ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स पूरे वर्ल्ड में 110 कंट्रीज में फैले हैं, विच इज क्वाइट बिग. एंड टुडे देर आर मोर देन 8,500 सेंटर्स, 8,500 सेवा केंद्र हर इस 110 देशों में है. भारत के तो हर शहर में, मतलब बड़े बड़े शहरों में 100 से अधिक सेवा केंद्र हैं. तो जहां भी आप रहते हैं, आपके 5-8 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको एक सेवा केंद्र जरूर मिलेगा. वहां बहने हैं जो परमात्मा के द्वारा ये दिया गया परिचय, परमात्मा का परिचय खुद उसने ही दिया है. और जब परमात्मा खुद अपना परिचय देते हैं, तब वो परिचय बिल्कुल एक्यूरेट होता है. तो परमात्मा का उनके खुद के द्वारा दिया गया परिचय वो हमें सेंटर पर जाकर मिलता है. 7 days कोर्स है, 1 hour एवरी डे फॉर 7 days, जो समय हम चूज करते हैं, टाइम absolutely free of cost. बस थोड़ा सा समय निकालना है, दिन समय सब कुछ हम चूज करें और ये विधि को सीखते हैं. जैसे आप कह रहे थे ना कि मेडिटेशन हम सीखें कैसे, एक्चुअली परमात्मा से संबंध जोड़ना ये सीखना नहीं है, लेकिन उसका परिचय चाहिए, अपना परिचय चाहिए. ये परिचय मिल जाता है, समय का परिचय मिल जाता है और वो विधि मिल जाती है, फिर उसको हम अपने आप कर सकते हैं.
0: यू सेड दिस 7 days में, 7 days जो एक एक घंटा, 7 घंटों में बेसिकली हमें इंट्रोडक्शन हो जाता है गॉड का, कि ये, और हम उनसे जो कॉन्वर्सेशन करते हैं वो कैसे कर पा रहे हैं. ये पूरा प्रोसेस परिचय की जो बात कर रहे थे, तो ये 7 घंटे परिचय के लिए. उसके बाद हमें, हम अपने आप कभी भी
1: उसके बाद इट्स अ रिलेशनशिप. सेंटर्स आर ऑलवेज देयर. वो सेंटर है क्योंकि वहां पर जाने से एक यू नो इजी हो जाता है क्योंकि हम सारा दिन
0: पूरा माहौल
1: बहुत हाँ तो वो वायुमंडल मिलता है, वो शिक्षाएं मिलती हैं. लेकिन एक रिलेशनशिप हैज बिगन. उसके बाद आपको जैसे समय मिले आप सेवा केंद्र की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं. लेकिन एक विधि सीख ली तो आप उसको घर पे करना शुरू कर सकते हैं, अपना समय निकाल कर. और वो सारा दिन हो सकता है. इट इज़ नॉट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम कि आपको इतनी देर मेडिटेशन करना है. इट्स लाइक किसी को प्यार से याद करना है, उसके लिए कोई डिफाइंड यू नो स्ट्रक्चर्ड टाइम नहीं होगा.
0: डेफिनेटली सबसे बड़ी बात है मैं आपके साथ अपना रिश्ता कितना गहरा करना चाहती हूं,
1: ये तो मेरी चॉइस है.
0: मैं कितना उसमें टाइम स्पेंड कर रही हूं, यू नो लाइक हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर मी टू हैव अ रिलेशनशिप विद यू, अ स्ट्रांग रिलेशनशिप. और मुझे नहीं लगता कि अगर once my introduction happens,
1: right,
0: I would like to have any other relationship.
1: नहीं, that's also, you know, फिर कई बार लोग सोचते हैं अच्छा मतलब इस चीज में जुड़ गए, मेडिटेशन कर रहे हैं, परमात्मा की तरफ ध्यान लग गया तो बाकी सारे संबंधों से किनारा कर लेंगे, डिटैच्ड हो जाए. That's not true. ये एक चार्जिंग प्रोसेस है एंड इससे उल्टा हमारे रिलेशनशिप्स और भी ब्यूटिफुल हो जाते हैं. यू नो जब हम खुद भर जाते हैं अंदर से, क्योंकि हम अभी तक बैटरी से मांग रहे थे. You know, it's like this. मुझे शांति दो, मुझे प्यार दो. We got connected to the powerhouse. अब हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती.
0: और हम कई बार एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो हम देना शुरू करते हैं.
1: एक्स्ट्रा नहीं, हो ही जाता है, नेचुरल है, देना नहीं पड़ता है. जो चीज आपके अंदर भर जाएगी, यू आर अ ट्रांसमिटर. देन आप जहां जाएंगे आपकी वाइब्रेशन, आपकी थॉट आपके साथ हर जगह ऑटोमेटिकली जाएगी. यू डोंट हैव टू मेक एफर्ट फॉर दैट. एंड परमात्मा से संबंध जब जुड़ जाता है तो यू सी जिसके साथ आपका संबंध होगा आप उसके जैसा बनना चले जाते हैं. एज द कंपनी नो सो विल बी द इफेक्ट. तो सत्संग जिसके लिए कहते हैं, लोग कहते हैं हम सत्संग में जा रहे हैं, वो है उस सत्य का संग करना. सिर्फ हम जा रहे हैं और प्रवचन सुन रहे हैं, ये सत्संग नहीं है. उस सत्य के संग में रहना तो संग का रंग
0: अपने आप
1: ऑटोमेटिकली लगता है, नेचुरल है.
0: ओके, इट लुक्स लाइक सच अ ब्यूटीफुल.
1: इट इज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस.
0: बट इट इज पॉसिबल, लाइक यू नो सी वी लिविंग इन सच ब्लैक लाइफ.
1: सी आई विल टेल यू, ब्रह्मा कुमारीज में आज 9 लाख के करीब परिवार है. दे आर फैमिलीज, दे आर नॉट सरेंडर्ड. जो कई लोग सोचते हैं कि ये तो बस दुनिया से कट गए, आश्रम में रह रहे हैं, नहीं. फैमिलीज, प्रोफेशनल्स, हाउसवाइफ्स, चिल्ड्रन, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, जो अपनी जिम्मेवारियां, अपने संबंध, अपने परिवार सबको संभाल रहे हैं, अपनी जॉब, अपनी बिजनेस सब कुछ कर रहे हैं. लेकिन सब कुछ जहां हम इतने रिश्ते निभा सकते हैं, क्या एक और रिश्ता नहीं जोड़ सकते?
0: जो कि हमें बाकी सारे रिश्तों को ज्यादा बेटर कर देगा,
1: जो कि मेरे करियर को बहुत अच्छा कर देता है, जो कि मेरी फिजिकल हेल्थ को अच्छा कर देता है, जो कि मेरी मेंटल वेलबींग को बहुत अच्छा कर देता है, तो वो रिलेशनशिप क्यों नहीं? और उसके लिए कोई बहुत एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं निकालना पड़ता, बिकॉज इट्स नॉट अ फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है. आपके साथ अभी बैठे हुए भी मैं उसे याद कर सकती हूँ. तो डू आई नीड टू टेक आउट एक्स्ट्रा टाइम? नहीं. तो सब कुछ करते हुए ही ये पॉसिबल है. अगर हम कहें जी अभी नहीं, रिटायर होने के बाद करेंगे, तो इट इज लाइक सेइंग कि मैं अपने जीवन के सारे एग्जाम्स दे दूं फिर उनकी तैयारी करूंगी.
0: बिल्कुल,
1: तब पढ़ेंगे बैठ के. नो, द एग्जाम इज नाउ, सो आई नीड द नॉलेज
0: नाउ, बिकॉज़ द जर्नी इज इंपॉर्टेंट, यू नो,
1: एंड देन आई एंजॉय द जर्नी. इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस.
0: और
1: एक चार्ज्ड बैटरी, यू नो, यू आर सो फुल एवरी डे, यू आर सो फुल व्हाइल यू आर इंटरेक्टिंग विद पीपल. तो फिर लोगों का जो इन्फ्लुएंस, जो हमने सारी बात की, एंगर, टेंशन, एंग्जायटी, लोगों का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि आप अपने कंट्रोल में आते जाते हैं. तो उसके लिए क्या हम थोड़ा सा समय नहीं निकालेंगे? ऑल दैट इट रिक्वायर्स प्रोबेबली 10 मिनट्स एवरी डे टू बिगिन विद. 10 मिनट अपने आप से रिफ्लेक्शन, काउंसलिंग, सेल्फ टॉक, परमात्मा से बातें. बेस्ट काउंसलर जो सिर्फ काउंसिल नहीं करता, साथ में पावर भी दे देता है उस काउंसलिंग को प्रैक्टिकल की लाइफ में इंप्लीमेंट करने के.
0: और आज के वक्त में, यू नो, लाइक द वे वी हैव बिकम सो प्रैक्टिकल, आई थिंक जितने भी दर्शक भी देख रहे होंगे, इवन टू मी, यू नो, हमारा जो इंटेलेक्ट इतना स्ट्रांग हो गया है, इतने लॉजिकल हो गए हैं, दिस लुक्स लाइक वेरी लॉजिकल.
1: इट इज वेरी लॉजिकल बिकॉज इट्स द ट्रूथ. इट्स नॉट इमेजिनेशन, ये कल्पना नहीं है. लेकिन उसके लिए खुद एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा,
0: एक्सपीरियंस करके देखना पड़ेगा. जो इंट्रोडक्शन की बात है,
1: एब्सोल्युटली, दैट
0: द फर्स्ट स्टेप हैज टू बी फ्रॉम माय एंड.
1: एक स्टेप तो लेना ही पड़ेगा. एक्सपेरिमेंट कीजिए, वर्क करता है, एक्सपीरियंस होता है, तो ये सत्य है.
0: वाह वंडरफुल. तो शिवानी, ये जो पूरा आज जो ये कंसेप्ट, एक यू नो इतना हमने बात की, इतने सारे मुद्दों पे बात की जो हमें परेशान कर रही है, लेकिन इतना आसान और इतना प्यारा सा सोल्यूशन नजर आया जो कि पॉसिबल है, जिसके लिए हम सोचते थे कि ये तो हो ही नहीं सकता. मुझे ऐसे बहुत लोग होंगे सोचते होंगे कि जो दिस इज नॉट डन, दिस कांट बी पॉसिबल, सो दिस इज इन फैक्ट सो ईजी. पहली बात, सबसे बड़ी बात जो है कि पहला स्टेप हमें उठाना पड़ेगा, क्योंकि आई द सोल हैज टू टेक द फर्स्ट स्टेप. बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत के लिए. इतनी सारी पहेलियों में हमने बात की, इतना सब कुछ हमने जानने की कोशिश की थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है. आंसर इतना सिंपल, इतना आसान था, पहला कदम हमें उठाना है. तो अगर आप भी इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, पहला कदम उठाना चाहते हैं, तो भाई फोन कीजिए, ईमेल कीजिए और अपने सवाल हमें भेज दीजिए. आप हमें फोन कर सकते हैं और अपनी जो भी जानकारी चाहते हैं, जो भी सवाल आपका है, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. तो इसी के साथ वक्त है आपसे इजाजत देने का, लेकिन इस वादे के साथ और इस दुआ के साथ कि जो ये पूरी हमने इन्फॉर्मेशन ली है, जो एक आत्मा से परमात्मा के मिलन का, उस कनेक्शन की हम बात करते आए हैं, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट किस तरह से उसे अपनी जिंदगी में हम शामिल कर सकते हैं, राज योगा के सेंटर्स में जाकर एक बार ट्राई जरूर करेंगे, पहला कदम जरूर उठाएंगे. अब दीजिए इजाजत, नमस्कार.

निधि सकल विघ्न कर दूर हमारे, यही सुमिरे नव तरत जात है उनके पूरण करत काज। दुंकित दुंकित ध्वनि मृदंग बाजे, मत मतंग गण नाथ है नाचे। तिकट तत्ता तिकट गदिर था, तिकट तत्ता तिकट गदिर था।

0: आप सुन रहे हो रेडियो मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग। आप लखानदेश, आप ली मानसर।
1: नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भवन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, कबीर साहब की एक खूबी है कि वे कभी भी सत्य को छुपाकर या धीमे स्वर में नहीं कहते। वे भरे बाजार में खड़े होकर सबको सुनाकर अपनी बात कहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि समय की रेत हाथ से फिसल रही है। आज कबीर साहब की ओर से आप सबके लिए एक सीधा संदेश है, सत्य को थामने का। कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, राम कहा भला होएगा नहीं तर भला न होए। कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई।

0: दिवसाला 15 मिनिटे जरी व्यायाम केला ना तरी नक्कीच आपल्याला या आजारात फायदा मिळेल.
1: हाय, मी आहे आरजे विभूती आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ मन भवन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग.
2: नमस्कार, ओम शांती. संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज माउली, उनका पसायदान, उसके ऊपर हम चिंतन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं. और यह पसायदान की दूसरी पंक्ति लाइन या ओवी, जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवांचे, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे पिछले एपिसोड में. तो जे खळांची व्यंकटी सांडो, इसके ऊपर भी हमने चर्चा की. खल मीन्स क्या है? दुष्ट या बुराई, और बुरा आदमी, बुरा आदमी या बुरी व्यक्ति, उसके अंदर की बुराई निकल गई तो क्या होगा, इसके ऊपर भी हमने चर्चा की. तो यहां माउली कहते हैं कि जे खळांची व्यंकटी सांडो मीन्स जो बुराई है, टेढ़ा है, टेढ़ेपना जो है, व्यंकटी मीन्स टेढ़ापन, जो मन में टेढ़ापन है, सीधा सरल होता है तो कितना अच्छा लगता है. तो ये टेढ़ापन निकलने के बाद क्या भरना है, इसके बारे में माउली ने कहा है. तया सत्कर्मी रति वाढ़ो, सत्कर्म क्या है उसके बारे में भी हमने चिंतन किया. लेकिन मुझे इस समय ऐसे लगता है कि तया सत्कर्मी रति वाढ़ो, रति मीन्स इंटरेस्ट, रत होना, रममाण होना, खुशी से होना चाहिए. सत्कर्म जो है, सत्कर्म जो है वो अच्छा कर्म, हर कोई चाहता है कि मैं अच्छा कर्म करूं, कोई खुशी से नहीं करता बुरा कर्म. बुरा कर्म कभी कभी प्रसंगवश हो जाता है, कभी कभी संस्कार के वश हो जाता है, और कभी कभी विकारों के वश हो जाता है. लेकिन दिल से अगर किसी को पूछे तो हर कोई अच्छा कर्म करने की इच्छा रखता है, लेकिन वो होता नहीं है. और जब दुष्कर्म होता है तो उनको, मुझे नहीं लगता, बहुत खुशी होती होगी. मन में कहीं ना कहीं कॉन्शियसली, वो बोलते हैं ना, मन खाता रहता है, मन में कहीं ना कहीं खिटपिट रहती ही है अंदर. तो सत्कर्मी रति वाढ़ो मीन्स खुशी से हमें भगवान की भक्ति या भगवान को याद करना या भगवान से संवाद करना, डायलॉग, ये खुशी से होना चाहिए. लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम भगवान के पास जाते हैं या भक्ति करते हैं या पूजा करते हैं या नमस्कार करते हैं, वो डर के मारे करते हैं. इसलिए देखिए कैसे इंग्लिश में कहावतें भी कैसे हैं. अगर हम किसी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, तो हम क्या कहते हैं दूसरों को, यस आई एम गॉड फियरिंग पर्सन. गॉड फियरिंग, भगवान से डरने वाला. हमें डर लगता है भगवान से. और फिर अगर हम भगवान की पूजा डर के मारे करते हैं तो इज इट गुड? आप सोचो, आप पिता हो या माता हो और आपके बच्चे हैं, और ये बच्चे आपको प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, लेकिन डर से. कहीं आप उनको बिगाड़ ना दो, कहीं आप उनको पनिश ना करो. इसी डर के मारे अगर वो प्यार करेंगे तो अच्छा लगेगा. लेकिन ये हम सोचते नहीं है, और इसलिए कहते हैं आई एम ए गॉड फियरिंग पर्सन. आजकल ये भी बहुत चलता है. आप व्हाट्सएप पे देखो, फेसबुक पे देखो, क्या होता है, कंपल्सिव मैसेजेस. आप ये मैसेज 100 लोगों को भेज दो, 50 लोगों को भेज दो, 25 लोगों को भेज दो, 10 लोगों को भेज दो, तो ये आपको फायदा हो जाएगा. अगर नहीं भेजोगे तो डैश डैश डैश क्या हो गया, हर कोई मन में जानता है कि ये ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं डर रहता है कि कहीं गलती से ऐसा सचमुच ना हो, तो उससे क्या करे, भेज दो, लोगों को भेज दो, दो तीन ग्रुप बनाओ, लोगों को भेज दो, और फिर हर वही आदमी फिर दूसरा करता है, तीसरा करता है, तो ये डर फैल जाता है। हमारा उद्देश्य डर फैलाना नहीं है, हमारा उद्देश्य जो है वो सुख फैलाना है, आनंद फैलाना है, शांति फैलाना है। और ये सत्कर्म में रति वाड़ो, ज्ञानदेव ने, माउली ने जो कहा है, सत्कर्म में रति होनी चाहिए, रत होना चाहिए, मेरा मन उसमें रत होना चाहिए, मुझे खुशी होनी चाहिए। ये खुशी भगवान को जब हम सही मायने जानते हैं, सही तरीके से जानते हैं, तब होगी। सिर्फ डर रहेगा तो खुशी नहीं होगी। हम करेंगे जरूर, पूजा करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, भगवान को नहलाएंगे, उनको भोग चढ़ाएंगे, सब करेंगे, लेकिन प्यार कम और डर ज्यादा, उससे कुछ फायदा होगा? अपने आप सोचिए, कंपेयर करिए खुद से। अगर कोई डर के मारे आपसे प्यार करता है तो कैसे लगेगा? तो वही चीज अगर भगवान को भी लगती है, कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा। तो ये सत्कर्मी रति वाड़ो, और जैसे सत्कर्म में रत होता है, मन मेरा रत हो जाता है, तो भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवान से। भूत मीन्स भूत मात्र, ह्यूमन बीइंग, जो जिसके बारे में हमने चर्चा की, बीइंग क्या है, ह्यूमन क्या है, ये भी हमने पिछले एपिसोड में देखा। तो एक दूसरे के तरफ प्यार, हम प्यार का भी बहुत बदनाम कर दिया है, प्यार को हमने बदनाम किया है। प्यार मीन्स एक ही हम देखते हैं, प्रेम, बॉडी अट्रैक्शन, शारीरिक आकर्षण, नहीं, माँ और बेटे का प्यार, पिता और पुत्री का प्यार, इतना पवित्र प्यार है। और वो जो प्यार है, इसलिए हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में विश्व बंधुत्व गाया जाता है। विश्व बंधुत्व में विश्व बंधुत्व, खाली भारत बंधुत्व नहीं है। हम ये भी कहते हैं, जब शपथ लेते हैं तब कहते हैं, भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे बांधव है, कहते हैं ना बांधव। तो हम एक दूसरे के भाई बहन है, ये रिश्ता है, ये हमने कहीं ना कहीं मान्य किया है, लेकिन खुली दिल से हम मान्य नहीं करते। भाई और बहनों एड्रेस करते हैं सभा में, जब एड्रेस करते हैं तो भाई और बहनों कहते हैं, रक्षा बांधते समय भी भाई और बहन कहते हैं, लेकिन खुले दिल से एक्सेप्ट नहीं करते। और इसलिए प्यार जो है वो फैलता नहीं। भूताम परस्परे जड़ो मैत्र जीवान से, मैत्री होनी चाहिए। मित्रता जो है उसमें प्यूरिटी है, मित्रता जो है उसमें खुशी है, चाहे वो मित्रता लड़का और लड़की, मेल और फीमेल उनकी भी हो, क्योंकि उनके बहुत अच्छे उदाहरण हमारे यहाँ है, श्री कृष्ण और द्रौपदी। श्री कृष्ण और द्रौपदी, उनका जो नाता था वो सखा और सखी का था, और सखा और सखी का जो नाता है वो बहुत पवित्र है, वो बहन से भी ज्यादा पवित्र है, क्योंकि उसमें कोई अपेक्षा नहीं है। मित्रता जो है, मैत्री जो है, उसमें कोई अपेक्षा नहीं है। जब रिश्ता जुड़ जाता है तब अपेक्षा आ जाती है, क्योंकि बोलते हैं रिश्ते जो है वो बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं, देयर इज नो चॉइस। आपके कोई भी रिश्ते हो वो आपको चॉइस नहीं है, लेकिन मैत्री, मैत्री जो है, मित्र, मैत्र, फ्रेंडशिप, यू हैव गॉट लॉट ऑफ चॉइस। इसलिए फ्रेंडशिप में जो मजा है वो अजीब सा है, बहुत अद्भुत है। तो ये मैत्र जीवन से उसके बारे में माउली ने कहा है, भूताम परस्परे जड़ो मैत्र जीवन से। तो एक बार व्यंकटी निकल गई, फिर से हम रिपीट करते हैं, जे खड़ांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रति वाड़ो। एक बार व्यंकटी दुष्टता निकल गई और सत्कर्म के प्रति प्यार उत्पन्न हो गया तो क्या होगा? भूताम परस्परे जड़ो मैत्र जीवांसे, सारी दुनिया जो है मैत्र, मित्रता आ जाएगी, प्यार आ जाएगा, मधुरता आएगी और रिश्ते बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। और यही तो हमें चाहिए। स्वर्ग का जो रोड मैप माउली ने जो बनाया है उसमें पहले जो है फर्स्ट पॉइंट है मित्रता। आपस के रिश्ते जो है मधुर होने चाहिए, संबंध मधुर होने चाहिए और यही माउली ने मांगा है पसायदान में। अभी अगला जो श्लोक है, आप अगली जो ओवी है, अगला जो लाइनर है, उसके बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, ओम शांति।
3: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि आपण ट्यून केलं आहे रेडिओ मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टच।
2: नमस्कार, ओम शांति। मैत्र जीवन से यहां तक हम आए थे। जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रति वाढो भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवन से। ये मैत्र जीवन से इसमें हम चर्चा कर रहे थे, इसके ये पॉइंट के ऊपर। मैत्र जीवन से जब मैं सुना, जब भी मैं सुनता हूं तब मुझे दो शब्द याद आते हैं। मराठी में कहते हैं जीवलग, जीवलग दोस्त। कैसा है दोस्त? जीवलग में जान से भी प्यारा, जिसके ऊपर जान न्योछावर कर देते हैं ऐसा। या अगर हिंदी में कहते हैं हम तो जिससे जी लग जाता है ऐसा दोस्त। तो ये रोड मैप जो है माउली ने देखा है स्वर्ग के लिए, उसकी जो प्री कंडीशंस है, ऐसे ऐसे होगा तो ये होगा। हर एक में रहता है ना, अगर अच्छा पढ़ाई करोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, वैसे जो प्री कंडीशंस है वैसे ये कंडीशंस है कि पहले क्या करना है। जे खड़ांची व्यंकटी सांडो, बुराई खत्म होनी चाहिए, फिर क्या होगा, अच्छाई आनी चाहिए। जे खड़ांची व्यंकटी सांडो, सिर्फ व्यंकटी सांडो, बुराई खत्म नहीं होनी चाहिए। तया सत्कर्मी रति वाढ़ो, एक दूसरे से प्यार, फिर क्या होगा। जे खड़ांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रति वाढ़ो भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवन से। तो आपस में प्यार होगा, भाईचारा होगा, कहीं भी लड़ाई नहीं होगी, कहीं भी अनबन नहीं होगी, सब खुशी खुशी हो जाएगा। पिक्चर सामने आता है। देखिए, हर संसार है, संसार में अगर कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, तो क्या होगा, सब खुशी खुशी हो जाएगा। और ऐसे तया सत्कर्मी रति वाढ़ो भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवन से, इस पॉइंट पे दूसरी पंक्ति, दूसरी ओवी पूरी होती है। सो ये मैत्र जीवन से होने के बाद आगे क्या होगा, दुरितान से तिमि रजावो। नेक्स्ट ओवी जो है, दुरितान से तिमि रजावो विश्वस्व धर्म सूर्य पाहो जो जे वांछील तो ते लाहो प्राणी जात। उसका अगर वर्ड टू वर्ड अर्थ देखेंगे तो ये है कि दुरितान से तिमि रजावो, दुरित दुखी अशांत ऐसे जो लोग है, तिमि रजावो अंधेरा खत्म होना चाहिए। जब अंधेरा खत्म हो जाता है तो विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, सूरज आ जाता है और फिर जो जे वांछील तो ते लाहु प्राणी जात, जो हर कोई व्यक्ति चाहता है उसे वो मिल जाएगा। ये शब्दों का अर्थ हम देखेंगे तो बस इतना ही है, लेकिन अगर उसके डेप्थ में जाएंगे और उससे गहराई तक जाएंगे तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से कुछ अलग ही अर्थ निकल जाता है। और यही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि दुरितान से तिमि रजावो, आजकल क्या होता है, तम जो है अंधेरा, तमोगुण जो है, तमोगुण भी कहते हैं, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, तीन गुण जो है उसमें तमोगुण कहते हैं, और अंधेर को भी तम बोलते हैं, तम निशेषा सरला। तम मीन्स ताप, इसके अर्थ में भी यूज करते हैं या शब्द प्रयोग करते हैं, तम मीन्स ताप। सो तम के तीन अर्थ हो गए, एक ताप हो गया, एक अंधेरा हो गया और एक तमोगुण हो गया। और कलियुग को क्या कहा जाता है? तमोगुण। तमोगुण जब बढ़ जाता है तब कलियुग आ जाता है, ऐसे मान्यता है। और ये मान्यता क्यों है, इसके लिए कोई आईना दिखाने की जरूरत नहीं है, हर कोई समझ सकता है कि ये कलियुग है। कुछ भी अगर खराब चीज होती है तो क्या कहते हैं हम लोग, कलियुग है भाई, कलियुग है। मीन्स हम ये मान्यता है, हमने मान्य किया है कि कलियुग है तो बुरी चीज होगी ही, फिर अच्छी कब होगी? अच्छी चीजें हमने सब स्वर्ग के लिए रिजर्व करके रखी है, और इसलिए कोई भी अच्छी चीज है तो कहते हैं स्वर्ग जैसा है। तो दीज आर ऑल आइडियल्स, और आइडियल्स में जो रहते थे उनको हमने आइडॉल बना दिया। स्वर्ग में जो आइडियल, सब चीजें आइडियल है स्वर्ग में, और वो आइडियल स्टेज में या आइडियल जिंदगी में या आइडियल पीरियड में, जिसे हम सतयुग कहते हैं, गोल्डन एज कहते हैं, और उसमें जो व्यक्ति रहते थे उनको हमने आइडॉल बना दिया। आइडॉल बनाने के बाद हम क्या कहते हैं, वो आइडॉल है, वो आदर्श है, बट वी नेवर थॉट दैट वी शुड ऑल्सो बिकम लाइक दैट। वही फर्क है आइडियल और आइडॉल में। तो हम इसके ऊपर चिंतन कर रहे थे कि तमोगुण, ये तमोगुण जो है वो कलियुग का निदर्शक है, रात का निदर्शक है, और ये रात का निदर्शक जो तमोगुण है वो पूरा होने के बाद क्या होगा, दुरितान से तिमिर जावो। तिमिर मीन्स तिमिर के शब्द के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। ये रात पूरी हो गई तो क्या होगा, दिन आएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यह सतयुग जो है वो कब आएगा। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं, कई चर्चा ये होती है कि यह विश्व परिवर्तन होगा, कई बोलते हैं विश्व का विनाश होगा दिसंबर 2012। बहुत चर्चा हो गई थी, ये विनाश होने वाला है, खत्म होने वाला है, हुआ ही नहीं। और फिर लोग पूछते हैं ये होता है या नहीं होता, या ऐसे ही गप मारते हैं। तो ये रात का अंधेरा जो है वो संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज ने, माउली ने उसी समय देखा, दुरितान से तिमिर जावो, तिमिर खत्म होना चाहिए। और ये तिमिर खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? अगर मैं किसी को कहता हूं कि आज रात को, रात में अंधेरा है, समझो 3 बजे है रात के, और मैं किसी को कहता हूं कि और कुछ 3-4 घंटे के बाद, 3-3.5 घंटे के बाद, अभी तो अंधेरा है लेकिन रोशनी आ जाएगी, मानेंगे नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि सब कुछ मानेंगे, सब लोग मानेंगे, भले रोशनी अमेरिका में देर से आएगी, भारत में पहले आएगी, लेकिन आएगी तो सही। तो ये जो रोशनी है, दुरितान से तिमिर जावो, ये रोशनी कब आएगी? ये रोशनी आएगी जरूर, लेकिन अगर मुझे, मैं भूल गया, मुझे याद है, और मैं मानता क्यों हूं, क्योंकि मुझे याद है, कल भी देखी थी मैंने, परसों भी देखी थी कि 6-6:30 बजे रोशनी आ जाती है, 7 बजे तो सूरज उग जाता है। लेकिन ये मैंने स्मृति में है, मेरे स्मृति में है, इसलिए मैं मानता हूं कि सूरज उग जाएगा, लेकिन सतयुग कब आएगा ये मेरे विस्मृति में चला गया, स्मृति में नहीं है। लेकिन संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज माउली के स्मृति में है, ऐसे मुझे लगता है, इसलिए उन्होंने कहा दुरितान से तिमिर जावो, विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछील तोते लाहो प्राणी जात। अभी अगले एपिसोड में ये विश्व क्या है, स्वधर्म क्या है, और सूर्य का है क्या है, उसके ऊपर चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, ओम शांति।
4: शिक्षण, माहिती, ज्ञान, मनोरंजनाने सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका. रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग.

0: नमस्कार, स्वागत करते हैं एक बार फिर आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। अभी तक हमने बहुत से एस्पेक्ट्स को जानने की कोशिश की है और सबसे बड़ी बात जो अभी हमने जानी वो ये कि मैं आत्मा हूँ और मेरी आत्मा कहना छोड़कर मैं आत्मा हूँ, ये रियलाइजेशन एक सबसे बड़ी बात है जो इस पूरा जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम समझ रहे हैं। और आज हम मेडिटेशन के ऊपर बात करेंगे। मेडिटेशन एक ऐसा शब्द है जो आज मेरे ख्याल से हर कोई अवेयर है, हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन मेडिटेशन का असली एस्पेक्ट क्या है और क्या मेडिटेशन आसानी से किया जा सकता है, यहाँ कहीं आश्रम में जाके ही हम उसे सीख सकते हैं, कर सकते हैं, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। शिवानी, हम ये तो अच्छी तरह से जो हमने बातचीत की थी कि आत्मा एक एनर्जी है जो यहाँ है और मैं आत्मा हूँ।
1: कैसी आत्मा हूँ
0: मैं? एक शांत, प्यार करने वाली और खुश रहने वाली
1: प्योर आत्मा हूँ,
0: एक वाइट कलर की तरह प्योर आत्मा हूँ। और मेरे साथ
1: व्हाइल यू आर सेइंग इट, सी योर एक्सप्रेशन।
0: ओके,
1: अपने आप के बारे में इस तरह से सोचते हुए भी यू जस्ट फील सो गुड।
0: Yes, yeah. actually, yeah, you know, like that's what I'm saying. कि the moment we'll realize, I think I had left it at that.
1: True.
0: कि जैसे ही मुझे एहसास हो कि मैं इतनी सुंदर हूँ, तो फिर दुनिया तो कैसी हो, क्या फर्क पड़ता है?
1: नहीं, but लेकिन तब ये नहीं होता कि कैसी है, तब ये realize होता है कि हर एक भी तो उतना सुंदर है।
0: हाँ, बिल्कुल, वो भी उतना ही सुंदर है।
1: So the way I feel nice about myself, I will feel nice about the other people also.
0: Of course, yes, and then all the problems will go away. लेकिन उसके लिए पूरे process से गुजरना पड़ेगा। आज क्योंकि मैं आपके साथ तो मुझे सानिध्य मिला तो मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन द मोमेंट आई विल गो आउट इट विल नॉट बी दैट इजी। एंड अगेन वी हैव टॉक्ड अबाउट इट कि मेडिटेशन से पॉसिबल हो पाएगा, पर मेडिटेशन है क्या, ये एक सबसे बड़ा पहला सवाल ये है। और क्या मेडिटेशन आसानी से किया जा सकता है, क्या मैं कर सकती हूँ, या इट्स लाइक यू नो आई हैव टू गेट इनटू समथिंग एल्स एंड देन गेट इनटू मेडिटेशन?
1: मेडिटेशन के बारे में भी कुछ गलत बिलीव्स हैं। अगेन, मेडिटेशन इज वेरी डिफिकल्ट, मेडिटेशन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मेरे से नहीं हो सकता है।
0: सी, दिस इज व्हाट आई, यू नो, एवरीबॉडी हैज बीन सेइंग स्टार्ट मेडिटेटिंग, एंड आई से ओके बट हाउ?
1: राइट, बट दैट वो इसलिए क्योंकि मुझे ये नहीं पता व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट। यू नो, अगर कोई कहे स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, बट व्हाट एक्सरसाइज, व्हिच एक्सरसाइज, हाउ टू डू इट, एक बार वो पता चल गया देन इट विल नॉट बी डिफिकल्ट। लेकिन सिर्फ बोलते रहे कि ये करिए करिए, लेकिन क्या करना है? मेडिटेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड मेडिरी, व्हिच मींस टू हील। टू हील, एक वूंड है, एक चोट है, उसको हील करना है, या लाइक वी डिस्कस्ड लास्ट टाइम टू क्लीन।
0: Okay, before you go into the practical aspect and the real aspect of meditation, let's start taking those aspects जिसे अभी तक हम meditation मानते आ रहे हैं, so that it becomes more clear to me also. You know, अभी तक मुझे ये था कि आप जिस भी पूजा की जगह पे आप जाते हैं वहां बैठिए, ध्यान लगाइए, ध्यान is meditation. लेकिन ध्यान मैं किसको लगाऊं, एक मूर्ति को, एक उस पावर को, एक एनर्जी को, और क्या करूं, कैसे ध्यान लगाऊं, यू नो, आंख बंद करके क्या करूं, यू नो, लाइक
1: मेडिटेशन को हम योगा भी कहते हैं। हम जैसे हम यहाँ पर जो मेडिटेशन हम करते हैं उसको कहते हैं राज योगा मेडिटेशन। तो योगा कहते ही पहली चीज जो आ जाती है वो है फिजिकल योगा, यू नो, जैसे हम प्राणायाम, हठ योग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो शरीर के लिए है। You cannot mix that with meditation. Meditation is internal. Meditation is to do with the mind. Meditation is to do with the soul. Meditation atma ka karya hai. Pranayam, hatha yoga, ye sharir ka karya hai. Do cheezon ko hum मिक्स नहीं कर सकते, और इसीलिए मेडिटेशन करने के लिए कोई आसन की जरूरत नहीं है आपको। मतलब ऑफ कोर्स अ राइट पोस्चर होता है, लेकिन हम यहाँ के यहाँ इसी तरह इस सोफे पे बैठे हुए वी कैन डू मेडिटेशन।
0: मेडिटेशन हैज टू बी साइलेंट, लाइक साइलेंटली हमें कुछ करना है, और हमें क्या मंत्रों का जाप करना है?
1: ये भी एक अलग अलग तरीके है। सी, अगेन देयर इज नथिंग राइट, नथिंग रॉन्ग, आई विल हैव टू ट्राई इट आउट एंड सी कि मेरे लिए कौन सी विधि राइट होती है। जैसे हम मंत्र जाप करते हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि जितनी देर हम मंत्र जाप करते हैं उतनी देर हमारे मन में कोई भी और व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा।
0: अगर मैं एक
1: अब वो हो जाता है जब हम शुरू में करना शुरू करते हैं, एक शब्द को, एक बहुत पवित्र शब्द को लेते हैं और उसका उच्चारण बार बार करते हैं, तो थोड़ा समय तो मन उस पर एकाग्र होता है, और उतनी देर कोई और थॉट नहीं आएगा, तो हमारी एनर्जी सेव हो गई, कंजर्व हो गई, नो लीकेज बेसिकली देयर इज नो लीकेज एट दैट टाइम. लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, जब मन को एक आदत पड़ जाती है, वही चीज बोल रहे हैं वही चीज बोल रहे हैं, तो वो वही हो गया कि अगर रोज सेम खाना खाया, आप घर पहुंचे और रोज वही सब्जी बनी है, तो थोड़े दिन के बाद आप उस सब्जी को खाने से थोड़ा सा कतराएंगे और आप सोचेंगे कुछ और खाते हुए घर चलते. इसी तरह मन जब बार बार वही शब्द उच्चारण कर रहा है, तो थोड़े समय के बाद हम बिना उस पर कंसंट्रेट किए उसका उच्चारण कर सकते हैं. इट इज लाइक नए रास्ते पर जाते हैं तो बहुत ध्यान से गाड़ी चलाते हैं, लेकिन जब हर रोज उसी रास्ते पर गाड़ी चलाते हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता. कई बार हम बहुत कुछ और सोचते सोचते लगता है घर पहुंच गए. We were not aware of what was happening.
0: Definitely, ये जो मंत्र उच्चारण की बात या चैंटिंग की
1: बात. Similarly, तो अब आप चैंटिंग कर रहे हैं या मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, आप एक शब्द बोलते जा रहे हैं, साथ साथ मन सोच रहा है आज पता नहीं ऑफिस में क्या होगा, हाँ जी आज पता नहीं खाने में क्या बना है, कल उसने ये कहा था आज पता नहीं. तो अब क्या हुआ, जर्नी पे चल रहे हैं लेकिन भटक रहे हैं, अवेयरनेस नहीं है किस रास्ते पे जा रहे हैं. तो इसलिए उस मंत्र जाप से जो प्राप्ति होनी चाहिए थी, जो लीकेज को हम प्रिवेंट करने वाले थे, वो नहीं हुआ, लीकेज हो रही है.
0: एक और तरीका जो लोग कहते हैं कि आप आंख बंद करके कंसंट्रेट कीजिए एक लाइट पर और बाकी कोई विचार नहीं आने दीजिए. तो इट्स लाइक आई ट्राइड बट इट वाज नॉट पॉसिबल.
1: क्योंकि बाकी कोई विचार नहीं आने दीजिए, दिस इज मोर और लेस इम्पॉसिबल, यू नो, क्योंकि मन का काम है सोचना. आप उसको दमन नहीं कीजिए, आप उसको रोकने की कोशिश नहीं कीजिए, वो उसका नेचुरल कार्य है. एक स्प्रिंग है, अगर आप उसको दबा देंगे जबरदस्ती, वो दब तो जाएगा लेकिन जैसे ही वो प्रेशर रिलीज होगा, इट विल जस्ट रीबाउंड. तो पानी बह रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसकी धारा को परिवर्तन कर सकते हैं, उसको चैनलाइज कर सकते हैं. तो मेडिटेशन जो हम सीखते हैं, इट इज नॉट स्टॉपिंग द माइंड. और वैसे भी स्टॉप करके फायदा क्या होगा, हमें क्या रिजल्ट चाहिए, हम मेडिटेशन से क्या चाहते हैं. फॉर मी पर्सनली, मुझे मेडिटेशन से क्या चाहिए था, अ ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन अपनी आदतों का, ट्रांसफॉर्मेशन अपने संस्कारों का, परिवर्तन अपनी पूरी जीवन शैली का, अपनी वृत्ति का, अपने दृष्टिकोण का. तो वो मन को दबन करने से नहीं होगा,
0: कोई अपने रॉन्ग बिलीव्स का,
1: वो सारा एटीट्यूडनल चेंज चाहिए था मेडिटेशन से. मन को जब हम दबन करते हैं तो कुछ देर के लिए कोई गलत संकल्प नहीं आएगा, लेकिन कोई सही संकल्प भी तो नहीं आया ना,
0: क्योंकि जनरेट ही नहीं.
1: हाँ, तो लीकेज बंद हुई, डिस्चार्ज नहीं हुआ, लेकिन चार्ज कहाँ हुआ. There are two different things. आपने discharge नहीं किया, लेकिन क्या आपने charge किया? तो meditation should be कि working on yourself, charging process, जिससे कि फिर आप जब सिर्फ वो 10 मिनट meditation या 15 मिनट नहीं, आप सारा दिन में कुछ भी कर रहे हैं, वो मेडिटेशन का रिजल्ट आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई देना चाहिए. आप जब बैठकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करते हैं धीरे धीरे, तो वो सिर्फ उस टाइम के लिए नहीं होता है, वो पॉजिटिव प्रोग्रामिंग फिर आपकी सारा दिन वर्क करती है. आप सोल कॉन्शियसनेस जब सुबह बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो सारा दिन आप एक एफर्ट या एक नेचुरली रहेगा कि आप सोल कॉन्शियस स्टेज में रहते हैं. तो मेडिटेशन का रिजल्ट उतनी देर के लिए नहीं होना चाहिए, वो सारा दिन आपके ऊपर आना चाहिए. तो मेडिटेशन, राजयोगा मेडिटेशन, राजयोगा अर्थात एक ऐसा योग जिससे हम स्वयं पर राज्य करें.
0: स्वयं मतलब अब कौन
1: सेल्फ, पोत द माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार एंड द फिजिकल ऑर्गन्स.
0: सोल, बॉडी एंड माइंड, they should be in sync. ये हम सुनते आए हैं,
1: right? You know? लेकिन जैसे हमने शेयर किया था कि soul and mind ये दो अलग चीजें नहीं है, दो energies नहीं है. soul जब सोचने का काम करती है, हम उसको mind कहते हैं. तो मैं आत्मा अपना मालिक जब बन जाता हूँ, that is called राजयोग, स्वयं पर राज्य करना, जिसको हम कहते हैं स्वराज्य, self sovereignty, self rule. तो एक आत्मा एक बैटरी की तरह है, जो बैटरी आज थोड़ी सी डिस्चार्ज है, और डिस्चार्ज होने के कारण वो थोड़ा सा तकलीफ दे रही है, कभी गुस्सा कभी चिड़चिड़ापन. अब उस बैटरी की चार्जिंग करनी है. एक है कि हम अपने आप उसको चार्ज करने की कोशिश करें, जो हम ट्राई करते हैं, जैसे आपने कहा कॉन्सेंट्रेट ऑन द सेल्फ. ओके, वी कैन डू इट, बट इट्स अ लिट लिटिल डिफिकल्ट, लिटिल चैलेंजिंग, क्योंकि डिस्चार्ज है ना, तो चार्ज करने में, चार्ज कैसे करेंगे बैटरी को?
0: चार्जर इलेक्ट्रिक सॉकेट में लगा के.
1: चार्जर किससे कनेक्ट हो जाएगा?
0: जो मेन सॉकेट है,
1: पावर सप्लाई.
0: ओके,
1: तो पावर सोर्स से जब तक इस बैटरी को नहीं कनेक्ट किया, तब तक इसकी चार्जिंग, वो क्या होगा, अगर खुद को ही चार्ज करेंगे थोड़ा सा होगी, फिर डिस्चार्ज. जैसे ना गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, अब उस टाइम है नहीं पावर सोर्स, तो हम किसी और बैटरी के साथ थोड़ी देर कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक हो जाता है. फाइनली वी हैव टू गो एंड गेट इट चार्ज. इसी तरह खुद पे थोड़ी सी मेहनत करते हैं या किसी और से बात कर लेते हैं, तो बैटरी टू बैटरी चार्जिंग, इट वोंट लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग, थोड़े टाइम में अगेन डिस्चार्ज. तो अगर रियली चार्जिंग करनी है, द बैटरी विल हैव टू बी कनेक्टेड टू द पावर सोर्स. तो उसके लिए पहचान चाहिए, परिचय चाहिए बैटरी का भी और पावर सोर्स का भी, कि किससे जोड़ रहे हैं, कौन है वो शक्ति.
0: बैटरी तो वी अंडरस्टूड लाइक इस,
1: कि मैं आत्मा हूँ. इसलिए जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो है सेल्फ रियलाइजेशन, जो हमने लिया कि सेल्फ टॉक, सेल्फ काउंसलिंग. लेकिन ये बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है, दिस इज नॉट मेडिटेशन, ये सिर्फ एक फर्स्ट स्टेज है. मेडिटेशन इज अ रिलेशनशिप, अ कम्युनिकेशन, एक संबंध परमात्मा के साथ. हमने बहुत सारे संबंधों की बात की और बहुत सारे संबंधों में उतराव चढ़ाव देखे, लेकिन जो एक संबंध जो बहुत वैल्यूबल है और जिसको आज की भागदौड़ में हम शायद कहीं भूल से गए हैं या खो सा गया है, वो है मुझ आत्मा का उस परमात्मा के साथ संबंध, ये है योग.
0: एंड वो परमात्मा, वो पावर, जिस सॉकेट पावर, फुल पावर की बात कर रहे हैं, जिसके साथ हमें अपना सॉकेट जोड़ना है, वो कहाँ है?
1: उसकी पहचान चाहिए, उसका परिचय चाहिए. जैसे हम लोग प्रेयर करते हैं, हम लोग जब सबसे पहले सेंटर पर आए तो हमने कहा हम तो वैसे भी भगवान को याद करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मतलब ये कोई नई बात नहीं है. प्रेयर और मेडिटेशन, इसमें भी थोड़ा सा अंतर है. प्रेयर इज लाइक वन वे कॉन्वर्सेशन,
0: आस्किंग फॉर इट.
1: हाँ, आस्किंग ऑल्सो एंड वन वे. आप देखो, हम जाते हैं मूर्ति के सामने, बहुत आस्था से खड़े होते हैं, हम अपनी बात कहते हैं. You know?
0: Can we hear him?
1: How will a relationship develop otherwise?
0: Can we have a conversation with Paramatma?
1: That's a relationship, na?
0: हाँ.
1: आप देखो, आप और मैं बैठे हैं, सिर्फ मैं ही बोलती जाऊँ, आप बिल्कुल बोले ही ना, तो संबंध कैसे बनेगा? संबंध तो मैं कुछ बोलूं, आप कुछ बोले, मैं कुछ पूछूं, आप कुछ उसका जवाब दे, तब तो एक
0: रिश्ता
1: बनता है. एक बोलता जाए, दूसरे की सुने भी नहीं और दूसरे की राय कुछ भी नहीं करे, तो ये संबंध नहीं है. और प्रेयर में और एक चीज जो थोड़ी सी हो जाती है, कि हम अपनी भावना की बात नहीं बोल रहे हैं. यू सी, एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं कि एक छोटा सा बच्चा पहाड़ी पर बैठा था, गैया चरा रहा था, तो बोर हो रहा था, पेड़ के नीचे बैठ गया. तो उसने सोचा मैं भी बोर हो रहा हूँ, भगवान भी ऊपर बैठा होगा, वो भी हम सबको ऐसे ही छोड़ देता है गैया चराने के लिए, जैसे मैंने छोड़ दिया, वो भी बोर हो रहा होगा, क्यों नहीं मैं उससे बातें करता हूँ. तो उसने बातें करनी शुरू की, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, मैं ये हूँ, आप कैसे हो, व्हाटएवर, अ लिटिल बॉय, वो अपनी वार्तालाप कर रहा था. एक पंडित जी वहां से गुजरे, बच्चे क्या कर रहे हो? जी मैं भगवान से बातें कर रहा हूँ. तो उसको डांट दिया, तुम भगवान से ऐसे थोड़ी बातें की जाती है. फिर उसको श्लोक सिखाए, रटाए, उसको मुश्किल हो रही थी रटने में, उसको रटाए, कहा यही बोलना, ये भगवान से बात करने का तरीका होता है. तो वो वही बोलने लगा, वही बोलने लगा. रात को, कहानी है ऑब्वियसली, रात को जब पंडित जी अपने घर पहुंचे और भगवान को याद करने बैठे, तो उन्होंने भगवान की आवाज सुनी, पंडित आज क्या किया सुबह? वो छोटा बच्चा कितनी मीठी मीठी अपनी प्यारी प्यारी बातें मेरे साथ कर रहा था, तूने क्या करा दिया उसको? अब वो ऐसी बातें कर रहा है जो उसको ना खुद समझ में आ रही है, ना उसके पीछे उसका कोई भाव है. सो दैट कैन नॉट बी अ रिलेशनशिप. यू सी, इफ आई पिक अप अ बुक एंड आई लर्न अप अ फ्यू वर्ड्स एंड मैं वही वर्ड्स आपके सामने सिर्फ बैठ के दोहराते रहूं, इट्स नॉट अ रिलेशनशिप. हम 100 लोग इकट्ठे खड़े होते हैं, प्रार्थना करते हैं. मुझे याद है हम स्कूल में खड़े होके प्रार्थना रोज करते थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें भावना मिसिंग है. हमने सिर्फ उन शब्दों को ही मैकेनिकली बोल दिया और सबके वही शब्द है. सबका वही बोल कैसे हो सकता है? तो मेडिटेशन इज कॉन्वर्सेशन, नॉट सेइंग समथिंग व्हिच आई हैव लर्नड अप, टॉकिंग टू गॉड.
0: talking to God.
1: Yeah, it's in conversation with God. Hmm. Absolutely.
0: But then will He talk back to us?
1: What do you think?
0: I don't know.
1: Is it possible?
0: I don't know. I'm saying, like, if you are saying it, I'm saying, but I don't think so, because I don't know who God is.
1: Atma ka Paramatma se conversation, right? Atma ka Atma se conversation kaise hota hai? Is mukh ke dwara, right? Lekin kabhi kabhi bina mukh ke dwara bhi hamara conversation hota hai.
0: Gestures.
1: Aap ghar baithe hain, aapko maine phone kar diya. Nahi, gestures ki bhi zarurat nahi hai. Aapko maine phone kiya, aapne kaha, main aapko hi abhi yaad kar rahi thi. Kya? Kaun? Kiska conversation chal raha tha? Telepathy. एक संकल्प यहाँ से क्रिएट हुआ, वो आप तक पहुंचा, आपसे भी संकल्प आया. कई बार हम किसी के पास अपना प्रश्न लेकर जाते हैं, प्रश्न बोलने से पहले ही सामने वाला व्यक्ति उसका आंसर दे रहा होता है. आपको कैसे पता चला ये मेरा क्वेश्चन था? पता नहीं. Why? Because question मुख से नहीं बोला जाता है, पहले वो यहाँ क्रिएट हुआ. और अगर सामने वाला रिसीवर ठीक है, क्लियर है, उसका बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, तो माई एनर्जी इज रीचिंग and you will give me back. Telepathy. Agar atma, atma ke beech ye communication thought power pe ho sakta hai, to atma aur paramatma se nahi ho sakta. Farak kya? In fact, it's easier. Kyunki yahan to hum sab thode se confused hai aur hamare bahut sara kuch chal raha hai, to wo receiver aur transmitter ki frequency thoda sa match karna kabhi kabhi difficult ho jata hai. But he is clean. He is beautiful. He is waiting for me. All that I have to do is tune my frequency to him.
0: Lekin at one point, lots of people must be tuning their frequency.
1: But that he is the powerhouse. So lot of batteries can get connected at the same time. It's energy, it's not physical. Dekho, ye sab limitations of being with so many people at the same time tab aati hai, jab ek physical costume aap use kar rahe hai. Paramatma to ek shakti hai. Wo nirakar hai. वो पावर है, जैसे मैं एक पावर हूँ, वो भी एक पावर है.
0: लेकिन तो उसको ये इतना लाइक इट्स अमेजिंग, बट इट लुक्स सो abstract actually.
1: It's not abstract, it's very simple. Once I get his introduction and I get to know him, without that it's abstract. Absolutely. Agar hum kahein ki haan bhagwan kuch hai, abhi tak kya tha bhagwan, kya tha mere liye, concept tha. God was a belief. Isiliye abhi tak kehte hain, do you believe in God? You know, आप कभी नहीं कहेंगे डू यू बिलीव इन योर पेरेंट्स. वट इज देयर टू बिलीव? दे आर माई पेरेंट्स. मतलब उसमें बिलीव क्या करना है? इट्स द ट्रूथ. सिमिलरली देर इज नो सच थिंग एज डू यू बिलीव इन गॉड. गॉड इज माई फादर. इट्स द ट्रूथ. बट अभी तक वो ट्रूथ को नहीं पहचाना, तो अभी तक वो बिलीव में ही चल रहे हैं. डू आई बिलीव इन गॉड? विच फॉर्म ऑफ गॉड? गॉड क्या है? तो ये सब चीजों की थोड़ी सी पहचान चाहिए, इसका परिचय चाहिए.
0: हमारे पास यू नो लाइक वक्त कम है, तो हम पहली चीज यहीं पे क्योंकि कहीं प्रोग्राम खत्म हो जाए और हम ये पहुंच ही ना पाए कि कैसे परिचय कैसे मिलेगा परमात्मा.
1: इसी के लिए जो हम राजयोगा फाउंडेशन कोर्स हर सेंटर पे, आज ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स पूरे वर्ल्ड में 110 कंट्रीज में फैले हैं, विच इज क्वाइट बिग. एंड टुडे देर आर मोर देन 8,500 सेंटर्स, 8,500 सेवा केंद्र हर इस 110 देशों में है. भारत के तो हर शहर में, मतलब बड़े बड़े शहरों में 100 से अधिक सेवा केंद्र हैं. तो जहां भी आप रहते हैं, आपके 5-8 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको एक सेवा केंद्र जरूर मिलेगा. वहां बहने हैं जो परमात्मा के द्वारा ये दिया गया परिचय, परमात्मा का परिचय खुद उसने ही दिया है. और जब परमात्मा खुद अपना परिचय देते हैं, तब वो परिचय बिल्कुल एक्यूरेट होता है. तो परमात्मा का उनके खुद के द्वारा दिया गया परिचय वो हमें सेंटर पर जाकर मिलता है. 7 days कोर्स है, 1 hour एवरी डे फॉर 7 days. जो समय हम चूज करते हैं, टाइम absolutely free of cost. बस थोड़ा सा समय निकालना है, दिन समय सब कुछ हम चूज करें और ये विधि को सीखते हैं. जैसे आप कह रहे थे ना कि मेडिटेशन हम सीखें कैसे, एक्चुअली परमात्मा से संबंध जोड़ना ये सीखना नहीं है, लेकिन उसका परिचय चाहिए, अपना परिचय चाहिए. ये परिचय मिल जाता है, समय का परिचय मिल जाता है और वो विधि मिल जाती है, फिर उसको हम अपने आप कर सकते हैं.
0: यू सेड दिस 7 days में, 7 days जो एक एक घंटा है, 7 घंटों में बेसिकली हमें इंट्रोडक्शन हो जाता है गॉड का, कि ये और हम उनसे जो कॉन्वर्सेशन करते हैं वो कैसे कर पा रहे हैं. ये पूरा प्रोसेस परिचय की जो बात कर रहे थे, तो ये 7 घंटे परिचय के लिए. उसके बाद हमें, हम अपने आप कभी भी
1: उसके बाद इट्स अ रिलेशनशिप. सेंटर्स आर ऑलवेज देयर. वो सेंटर है क्योंकि वहां पर जाने से एक यू नो इजी हो जाता है क्योंकि हम सारा दिन
0: पूरा माहौल
1: बहुत हाँ तो वो वायुमंडल मिलता है, वो शिक्षाएं मिलती हैं. लेकिन एक रिलेशनशिप हैज बिगन. उसके बाद आपको जैसे समय मिले आप सेवा केंद्र की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं. लेकिन एक विधि सीख ली तो आप उसको घर पे करना शुरू कर सकते हैं अपना समय निकाल कर. और वो सारा दिन हो सकता है. इट इज नॉट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम कि आपको इतनी देर मेडिटेशन करना है. इट्स लाइक किसी को प्यार से याद करना है, उसके लिए कोई डिफाइंड यू नो स्ट्रक्चर्ड टाइम नहीं होगा.
0: सबसे बड़ी बात है मैं आपके साथ अपना रिश्ता कितना गहरा करना चाहती हूं,
1: ये तो मेरी चॉइस है.
0: मैं कितना उसमें टाइम स्पेंड कर रही हूं, यू नो लाइक हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर मी टू हैव अ रिलेशनशिप विद यू, अ स्ट्रांग रिलेशनशिप. और मुझे नहीं लगता कि अगर वंस माय इंट्रोडक्शन हैपेंस
1: राइट
0: आई वुड लाइक टू हैव एनी अदर रिलेशनशिप.
1: नहीं दैट्स आल्सो यू नो फिर कई बार लोग सोचते हैं अच्छा मतलब इस चीज में जुड़ गए, मेडिटेशन कर रहे हैं, परमात्मा की तरफ ध्यान लग गया तो बाकी सारे संबंधों से किनारा कर लेंगे, डिटैच्ड हो जाए. दैट्स नॉट ट्रू. ये एक चार्जिंग प्रोसेस है एंड इससे उल्टा हमारे रिलेशनशिप्स और भी ब्यूटीफुल हो जाते हैं. यू नो जब हम खुद भर जाते हैं अंदर से, क्योंकि हम अभी तक बैटरी से मांग रहे थे. You know, it's like this. मुझे शांति दो, मुझे प्यार दो. We got connected to the powerhouse. अब हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती.
0: और हम कई बार एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो हम देना शुरू
1: करते हैं. एक्स्ट्रा नहीं, हो ही जाता है, नेचुरल है, देना नहीं पड़ता है. जो चीज आपके अंदर भर जाएगी, यू आर अ ट्रांसमिटर देन. आप जहां जाएंगे आपकी वाइब्रेशन, आपकी थॉट आपके साथ हर जगह ऑटोमेटिकली जाएगी. यू डोंट हैव टू मेक एफर्ट फॉर दैट. एंड परमात्मा से संबंध जब जुड़ जाता है तो यू सी जिसके साथ आपका संबंध होगा आप उसके जैसा बनना चले जाते हैं. एज द कंपनी नो सो विल बी द इफेक्ट. तो सत्संग जिसके लिए कहते हैं, लोग कहते हैं हम सत्संग में जा रहे हैं, वो है उस सत्य का संग करना. सिर्फ हम जा रहे हैं और प्रवचन सुन रहे हैं, ये सत्संग नहीं है. उस सत्य के संग में रहना तो संग का रंग
0: अपने आप
1: ऑटोमेटिकली लगता है, नेचुरल है.
0: ओके, इट लुक्स लाइक सच अ ब्यूटीफुल.
1: इट इज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस.
0: बट इट इज पॉसिबल, लाइक यू नो सी वी लिविंग इन सच ब्लैक लाइफ.
1: सी आई टेल यू, ब्रह्मा कुमारीज में आज 9 लाख के करीब परिवार है. दे आर फैमिलीज, दे आर नॉट सरेंडर्ड. जो कई लोग सोचते हैं कि ये तो बस दुनिया से कट गए, आश्रम में रह रहे हैं, नहीं. फैमिलीज, प्रोफेशनल्स, हाउसवाइफ्स, चिल्ड्रन, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, जो अपनी जिम्मेवारियां, अपने संबंध, अपने परिवार सबको संभाल रहे हैं, अपनी जॉब, अपनी बिजनेस सब कुछ कर रहे हैं. लेकिन सब कुछ जहां हम इतने रिश्ते निभा सकते हैं, क्या एक और रिश्ता नहीं जोड़ सकते?
0: जो कि हमें बाकी सारे रिश्तों को ज्यादा बेटर कर देगा,
1: जो कि मेरे करियर को बहुत अच्छा कर देता है, जो कि मेरी फिजिकल हेल्थ को अच्छा कर देता है, जो कि मेरी मेंटल वेलबींग को बहुत अच्छा कर देता है, तो वो रिलेशनशिप क्यों नहीं? और उसके लिए कोई बहुत एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं निकालना पड़ता, बिकॉज इट्स नॉट अ फिजिकल फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है. आपके साथ अभी बैठे हुए भी मैं उसे याद कर सकती हूँ. तो डू आई नीड टू टेक आउट एक्स्ट्रा टाइम? नहीं. तो सब कुछ करते हुए ही ये पॉसिबल है. अगर हम कहें जी अभी नहीं, रिटायर होने के बाद करेंगे, तो इट इज लाइक सेइंग कि मैं अपने जीवन के सारे एग्जाम्स दे दूं फिर उनकी तैयारी करूंगी.
0: बिल्कुल,
1: तब पढ़ेंगे बैठ के. नो, द एग्जाम इज नाउ, सो आई नीड द नॉलेज
0: नाउ, बिकॉज़ द जर्नी इज इंपॉर्टेंट, यू नो,
1: एंड देन आई एंजॉय द जर्नी. इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस.
0: और
1: या एक चार्ज्ड बैटरी, यू नो, यू आर सो फुल एवरी डे, यू आर सो फुल व्हाइल यू आर इंटरेक्टिंग विद पीपल. तो फिर लोगों का जो इन्फ्लुएंस, जो हमने सारी बात की, एंगर, टेंशन, एंग्जायटी, लोगों का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है क्योंकि आप अपने कंट्रोल में आते जाते हैं. तो उसके लिए क्या हम थोड़ा सा समय नहीं निकालेंगे? ऑल दैट इट रिक्वायर्स प्रोबेबली 10 मिनट्स एवरी डे टू बिगिन विद. 10 मिनट अपने आप से रिफ्लेक्शन, काउंसलिंग, सेल्फ टॉक, परमात्मा से बातें. बेस्ट काउंसलर जो सिर्फ काउंसिल नहीं करता, साथ में पावर भी दे देता है उस काउंसलिंग को प्रैक्टिकल की लाइफ में इंप्लीमेंट करने
0: के. और आज के वक्त में यू नो लाइक द वे वी हैव बिकम सो प्रैक्टिकल, आई थिंक जितने भी दर्शक भी देखे होंगे, इवन टू मी, यू नो, हमारा जो इंटेलेक्ट इतना स्ट्रांग हो गया है, इतने लॉजिकल हो गए हैं, दिस लुक्स लाइक वेरी लॉजिकल.
1: इट इज वेरी लॉजिकल बिकॉज इट्स द ट्रूथ.
0: यस,
1: इट्स नॉट इमेजिनेशन. ये कल्पना नहीं है, लेकिन उसके लिए खुद एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा,
0: एक्सपीरियंस करके देखना पड़ेगा. जो इंट्रोडक्शन की बात है,
1: एब्सोल्युटली,
0: दैट द फर्स्ट स्टेप हैज टू बी फ्रॉम माय एंड.
1: एक स्टेप तो लेना ही पड़ेगा. एक्सपेरिमेंट कीजिए, वर्क करता है, एक्सपीरियंस होता है, तो ये सत्य है.
0: वाओ वंडरफुल. तो मिस्टर शिवानी, ये जो पूरा आज जो ये कंसेप्ट, एक यू नो इतना हमने बात की, इतने सारे मुद्दों पे बात की जो हमें परेशान कर रही है, लेकिन इतना आसान और इतना प्यारा सा सोल्यूशन नजर आया जो कि पॉसिबल है, जिसके लिए हम सोचते थे कि ये तो हो ही नहीं सकता. मुझे ऐसे बहुत लोग होंगे सोचते होंगे कि जो दिस इज नॉट डन, दिस कांट बी पॉसिबल, सो दिस इज इन फैक्ट सो ईजी. पहली बात, सबसे बड़ी बात जो है कि पहला स्टेप हमें उठाना पड़ेगा, क्योंकि आई द सोल हैज टू टेक द फर्स्ट स्टेप. बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत के लिए. इतनी सारी पहेलियों में हमने बात की, इतना सब कुछ हमने जानने की कोशिश की थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है. आंसर इतना सिंपल, इतना आसान था, पहला कदम हमें उठाना है. तो अगर आप भी इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, पहला कदम उठाना चाहते हैं, तो भाई फोन कीजिए, ईमेल कीजिए और अपने सवाल हमें भेज दीजिए. आप हमें फोन कर सकते हैं और अपनी जो भी जानकारी चाहते हैं, जो भी सवाल आपका है, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. तो इसी के साथ वक्त है आपसे इजाजत देने का, लेकिन इस वादे के साथ और इस दुआ के साथ कि जो ये पूरी हमने इन्फॉर्मेशन ली है, जो एक आत्मा से परमात्मा के मिलन का, उस कनेक्शन की हम बात करते आए हैं, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट किस तरह से उसे अपनी जिंदगी में हम शामिल कर सकते हैं, राज योगा के सेंटर्स में जाकर एक बार ट्राई जरूर करेंगे, पहला कदम जरूर उठाएंगे. अब दीजिए इजाजत, नमस्कार.

निधि सकल विघ्न कर दूर हमारे, यही सुमिरे नव तरत जात है उनके पूरण करत काज। दुंकित दुंकित ध्वनि मृदंग बाजे, मत मतंग गण नाथ है नाचे। तिकट तत्ता तिकट गदिर था, तिकट तत्ता तिकट गदिर था।